0: गोल्ड। CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ। हमारे राम।
1: बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventimapollo.co.uk एंड यूज कोड हमारे राम 10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल शोज एंड टिकट।
0: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक Radio.
2: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
3: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
2: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
3: And you didn't pay those massive roaming charges?
2: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
4: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
5: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
6: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

0: लाइका गोल्ड।
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान,
2: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
3: साउथहॉल ट्रेवल, at all protected.
4: Are we there yet?
5: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
5: How? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simsy before we left London.
5: Simsy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
6: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
7: T's and C's apply.
8: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
9: बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ

सुनो मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

0: ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे।
1: सोता है, बहुत जागा है ना।
0: ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे, कौन है जो उसको गगन से उतारे। बन बन बन मेरे जैसा बन, इस जीवन का यही है जतन साला, यही है जतन।
2: अरे गम की आग बुझाना है तो हमसे सीखो यार।

0: भोले वाले ललुआ
1: बुलु बुलु बुलु बुलु बुलु बुलु
0: भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी।
2: यही खा के तो जवान होगा बेटा।
0: भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी, बड़ा होके बनेगा साहेब का चपरासी। खेल खेल खेल माटी में होली खेल, गाल में गुलाल है ना जुल्फों में तेल।
3: अरे अपनी भी जवानी क्या है सुनत है वार।

0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी।
1: जा भग जा भग भग।
0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी, हरेगा विद्या।

मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना आवे।

मन बुद्ध, मन्ने सगल पौन की शुद्ध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म से ती सनबंध।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई वलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले। होर के ते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई है भी हो।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बो लख होवै, लख होवै लखवीस, लख लख

देना जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नान गया जापै जाए,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: लाइका गोल्ड
1: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट ट्रेवल हब world.com
3: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
4: Lights on, shutters up, staff ready.
3: But today's customers don't start on the high street.
4: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
3: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
4: They walk into your competitors.
3: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
4: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
5: आपके सामने एक रेड बटन है
6: दबा दिया
5: नहीं दबाना
7: द मैडनेस इज बैक धमाल 4
8: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा
7: स्टारिंग अजय देवगन अर्शद वारसी रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी रिटर्न इन धमाल 4 डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार
9: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी
7: वॉच द बिगेस्ट फैमिली एंटरटेनर धमाल 4 इन सिनेमास नाउ
10: पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
12: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 02039635757 Greens by Daniel Prime Location
11: High Appreciation
12: in Dubai
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com T's and C's apply
14: Like a Radio Network Proud hospitality partner, Ragasan.
15: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk
16: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Laika Gold in London, the Midlands and Manchester.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com

0: as tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
4: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
3: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
4: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
3: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
4: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
5: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
6: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
5: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
7: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Come on, England. Roar it, score it. Bring the World Cup home. All the best to England from Leica Radio Network. The sun is out, and so are the summer hits on Leica Gold.
8: Aapka ye baja hi sahi ke

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
1: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3444-24-hour line.
2: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
3: No more worries for me or you.
4: Southall Travel, at all protected.

0: कैशियर।
1: गुड मॉर्निंग। स्वागत है मनोरंजन की दुनिया में श्रोताओं का, संगीत प्रेमियों का। शुक्रवार वर्ष 2026 के जुलाई महीने की 10 तारीख हमारी आपकी एक और संगीतमय मुलाकात, मीठे मीठे प्यारे प्यारे गीतों का साथ। और साहब कुछ अटपटी बातों की सौगात, अब से लेकर दोपहर बाद 1 बजे तक मैं रवि शर्मा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और बहन भाइयों हाजिर रहेंगे बहुत सारे, क्या कहें, गीत संगीत सूचनाएं समाचार चिंतन विचार और साहब कुछ जानकारियां। तैयार हैं आप?
2: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
4: TravelHub.
3: At all protected.
2: Leica. Non-stop classics. Classics. Leica Gold.
1: बहारों का मौसम है, त्योहारों का मौसम है। अरे साहब ये बाहर कुछ ज्यादा नहीं हो गई है? नहीं मतलब नहीं, हमें धूप अच्छी लगती है, गर्माहट अच्छी लगती है इस देश में, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर क्या कहते हैं, कहते हैं तौबा तौबा।

0: मनोरंजन
1: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।
2: ए

0: ठंडी हवाओं ने गोरी का घूंघट उठा दिया। गलत। अरे साहब, गोरी ने घूंघट उठाया है गर्मी से घबराकर, पसीने से डर के। ठंडी हवाएं पता नहीं कहां खो गई हैं। बैक टू बैक गीत सुनवाए हमने इस तरह से भाई कार्यक्रम का आगाज हुआ। माय नेम इज रवि शर्मा। फर्स्ट थैंक्स टू काजल, शी वॉन्ट बी बैक टुमारो मॉर्निंग, शी विल बी बैक ऑन मंडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो लेकर के। और भाई अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको पाउंड का रेट बताते हैं।
1: Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं, आज का रेट बता रहे हैं भाई। अगर आप लोगों को पैसे भिजवाना चाहते हैं, रेट अब भी अच्छा चल रहा है आज का रेट। वेल टुडे दे आर गिविंग 127.6 इंडियन रुपीज फॉर वन पाउंड। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप के माध्यम से आप पैसे भिजवा सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मोरक्को को हराकर फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और साहब अब अगले मंगलवार को सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन या बेल्जियम से होगा। और आपको बता दें कि भाई आज जो मैच होने जा रहा है वो स्पेन और बेल्जियम के बीच है। इन दोनों में से जो विजेता होगा वो फ्रांस से भिड़ेगा मंगलवार को। और शाम 8 बजे मैच शुरू होगा भाई। मैच के बारे में जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ये याद दिलाते हुए कि भाई जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं जो ये वर्ल्ड कप फुटबॉल के बारे में आप तक जानकारी पहुँचाते हैं, वो कहते हैं कि 15 मिनट फ्री लीगल एडवाइस आप उनसे ले सकते हैं। वे हैं रैक लॉ वाले। आपको जब उनसे संपर्क करें तो लाइका मेंशन करना होगा। डोंट फॉरगेट दैट।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Yeah, hai Leica Gold.

0: छलकाते रहो, पीते रहो और पिलाते रहो भाई, सुबह सुबह ऐसे गाने सुनवाते रहो, शर्म करो शर्मा जी। कुछ लोग भाई मुफ्त की मिलती है तो टॉप गियर लगा देती है। नाम किसी का भी लगे, रफी साहब की आवाज में आपने ये गीत सुना, बड़ा नशीला गीत था, बहुत प्यारा।
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma. Like
0: लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के खास खास समाचार सुनिए। एंडी बर्नहम लेबर पार्टी के अगले नेता और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ गए हैं। भाई कल गुरुवार से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया यानी नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है, उसके बाद अब तक 322 लेबर मेंबर्स जो हैं पार्लियामेंट के, वो बर्नहम की हिमायत में सामने आ गए हैं। फिलहाल वो इस पद के लिए अपनी उम्मीदवारी घोषित करने वाले इकलौते उम्मीदवार हैं। अगर उम्मीद के मुताबिक कोई दूसरा उम्मीदवार मैदान में नहीं आता है तो अगले सप्ताह बर्नहम को लेबर पार्टी का लीडर घोषित कर दिया जाएगा और इसके बाद वो 20 जुलाई को प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। ये ग्रेटर मैनचेस्टर के फॉर्मर मेयर बर्नहम के लिए सत्ता तक पहुंचने का एक बड़ा ही असाधारण सफर होगा। उन्होंने कुछ ही सप्ताह पहले मेकरफील्ड का जो उपचुनाव जीता था। एक बयान में बर्नहम ने कहा कि पार्टी का नेता बनाने के लिए उनका नामांकन उनका नॉमिनेशन करने वाले लेबर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के प्रति वो गहरे आभारी हैं, थैंक्स करते हैं। ये तो थी अपने घर की खबर। अब इंटरनेशनल खबरों में जो खबर छाई हुई है वो है, ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग ने संसद सदस्य इस्माइल कोसारी ने वार्निंग दी है कि यूएई को अमेरिका का सहयोग करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें भाई, वो जो खुशियां मनाई जा रही थी, सेलिब्रेशन चल रहे थे और क्रेडिट लूटने की वाह वाह बटोरने की जो प्रक्रिया चल रही थी, अब उस पर जैसे ब्रेक लगने लगा है क्योंकि अमेरिकी हमले और ईरान की ओर से भी जवाबी हमले जो है वो जारी हैं, दोनों तरफ से जैसे युद्ध शुरू हो गया है। ईरानी संसद के सुरक्षा आयोग के मेंबर ने हाल ही में जो हमले हुए हैं उनके पीछे संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का हाथ होने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि इन कार्रवाइयों से यूएई ने खुद को ईरान के दुश्मनों के पाले में खड़ा कर दिया है और उसे पता होना चाहिए कि इस हिमायत की कीमत बहुत भारी होगी। कोसारी ने बताया कि हथियारबंद सिक्योरिटी फोर्सेज के जनरल स्टाफ की पिछली चेतावनी के अनुसार आक्रामक बलों को किसी भी प्रकार का समर्थन देने पर ईरान की ओर से करारा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले भाई हर रात होते हैं और ईरान का दावा बुशहर का न्यूक्लियर पावर प्लांट भी निशाने पर है। भारत की बात करें, भारत से आने वाली खबरों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक जनसभा को एड्रेस किया है। उन्होंने अपने भाषण में विपक्षी दलों पर कई इल्जाम लगाए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग आज आस्था की बात करते हैं उन्होंने अयोध्या में हमारे पवित्र हनुमान गढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया था। क्या कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करवा पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये सब कर सकती हैं? अगर नहीं करवा पाएंगी तो ये पाप क्यों करवाया गया? मंशा साफ है तो काम अपने आप होते हैं, नीति स्पष्ट हो तो नियंता अपने आप सहयोग करता है। ये आज अयोध्या में दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा, लेकिन सरकारों ने यह काम किया है और छुटपुट जो कमियां हैं उसकी जांच भी चल रही है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों के नेता अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और अन्य कथित गड़बड़ियों को लेकर के लगातार आरोप लगाते रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें शामिल बड़े लोगों को सरकार बचा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना ऑस्ट्रेलिया का दौरा खत्म करके अब न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए। वे ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न से ऑकलैंड के लिए चल पड़े हैं, रवाना हुए हैं। ये 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री की यात्रा पर न्यूजीलैंड में भारतीय हाई कमिश्नर मुआनपुई सयावी ने एक इंटरव्यू में कहा कि यह निश्चित रूप से बेहद अहम यात्रा है, क्योंकि साझेदार देशों के नेताओं का आमने सामने मिलना बहुत जरूरी होता है। इससे पहले न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने पिछले साल मार्च में भारत का दौरा किया था। स्पेन में जंगल की आग से 11 लोगों की मौत हो गई है और साउथ यूरोप में हीट वेव जारी है। स्पेन के दक्षिण पूर्वी प्रांत अल्मेरिया के लॉस गायर्डोस इलाके में लगी जंगल की आग में कम से कम 11 लोग मारे गए हैं और इस घटना में 6 लोग जख्मी भी हुए हैं। कुछ मृतक उन गाड़ियों के अंदर मिले जिन्हें आग ने अपनी चपेट में ले लिया। लोगों का कहना है कि आग बिजली की गिरी हुई लाइन की वजह से लगी और देखते ही देखते पास के जंगलों में फैल गई। इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक आग की वजह से कई सड़कें बंद करनी पड़ी और करीब 1000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा समाप्त कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ और भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया अपना दौरा समाप्त करने से पहले। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेट कप्तान स्टीव वॉ और अन्य क्रिकेट खिलाड़ियों से मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों में क्रिकेट के प्रति जो जुनून है ना, वो लोगों को करीब ला रहा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई पर कुछ यूरोपियन लीडर्स की चुप्पी के बीच जर्मनी में ईरान के डिप्लोमेट्स ने कहा है कि व्हाइट हाउस के कथित अपराधों को सामान्य मान लेना, नॉर्मल मान लेना, किसी की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक कल गुरुवार को जारी एक संदेश में माजिद नीली ने कहा कि अमेरिका ने चीन तुर्कमेनिस्तान ईरान रेल कॉरिडोर पर स्थित अगतापेह खान पुल को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि ये पुल महज एक रेलवे का ढांचा नहीं था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट और व्यापार मार्ग का अहम हिस्सा था। यूक्रेन की फौज ने रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के आसपास अपने हमले तेज कर दिए हैं। क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाली जमीनी रास्तों पर हमलों के बाद अब यूक्रेन समुद्री सप्लाई मार्गों को भी, रास्तों को भी निशाना बना रहा है। यूक्रेन की ड्रोन फोर्स के कमांडर रॉबर्ट ब्रोवदी का कहना है कि पिछले 4 दिनों में आजोव सागर में कम से कम 25 जहाजों को निशाना बनाया गया है और उनमें आग लग गई है। आजोव सी केर्च के जरिए ब्लैक सी से जुड़ा हुआ है। यूक्रेन की फौज का दावा है कि अब तक 36 जहाजों को उन्होंने निशाना बनाया है और इनमें से ज्यादातर रूस के तथाकथित शैडो फ्लीट का हिस्सा है। ईरान और अमेरिका के बीच कल भी हमलों का सिलसिला जारी रहा। इसी दौरान बता रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की तादाद में काफी गिरावट आ गई है। अमेरिका का कहना है कि उसने हॉर्मुज के पास स्थित कुछ ठिकानों सहित 90 फौजी लक्ष्यों को अपना निशाना बनाया। वहीं ईरान का दावा है कि पिछले 2 दिनों में अमेरिकी हमलों में 14 आम लोगों की मौत हुई है, यानी वो आम ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने यह भी बताया है कि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के आसपास कुछ ठिकानों पर अटैक हुए हैं। और फीफा वर्ल्ड कप में भाई, क्षमा कीजिए साहब, थोड़ी सी एक खबर रह गई फीफा फुटबॉल की। वैसे तो हम जानकारी देते रहते हैं, लेकिन चलिए ये खबर अब शुरू कर ही दी है तो बता दें आपको कि फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मोरक्को को हराकर फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और अब आज जो मुकाबला है, आज भिड़ंत हो रही है स्पेन और बेल्जियम की। इन दोनों टीमों में से जो टीम जीतेगी उसका फ्रांस से मुकाबला होगा मंगलवार को सेमीफाइनल में। तो साहब ये जानकारी थी अंतिम आज की प्रमुख समाचारों की। समाचार समाप्त होते हैं।
3: Laika Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: और अब लौट आइए संगीत की ओर, सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: Like a gold. Holiday breaks are brought to you by South Old Travel.
2: और साउथ ओल्ड ट्रेवल याद दिला रहे हैं कि दे आर प्लीज टू अनाउंस दैट द एफसीडीओ हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई. कॉल साउथ ओल्ड ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पेटिटिव दुबई डील्स ऑन
1: 02058-574-8410. ये है Like a gold.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 02087828833 और विजिट TravelHubWorld.com.
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट TravelHubWorld.com.
2: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02 03963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Herald. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 02 08 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: वीजा प्रॉब्लम, इंतजार मत करें. हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन, असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं. अभी कॉल करें 02089072444. दैट्स 02089072444.
8: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com.

0: स्वर्गीय मुकेश का स्वर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम।
1: ये है लाइका गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और LemFi के रेट्स सुन लीजिए भाई, एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 127.88 रुपीस, पाकिस्तानी करेंसी में 372.35 रुपीस, श्रीलंकन रुपए 449.48, बांग्लादेशी टके 165.11 एंड अफगानी 85.92।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Well, the gold is trading at the rate of 98.46 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
4: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
3: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
4: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
3: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
4: Visit Kajal's Couture. .co.uk.
5: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
6: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and ticket.
5: Exclusive radio partner Leica Radio.
7: London, the wait is over.
8: Haldiram's is now open at Leicester Square, Central London.
7: The authentic taste of India has finally arrived right in the heart of London.
8: From Raj Kachori to Chole Bature, Pao Bhaji,
7: Parathas, sweets and so much more. Your favourite Indian flavours are now here.
8: Come with family, come with friends and enjoy the taste, the vibe and the celebration.
7: Haldiram's, now open at Leicester Square, Central London.
9: Haldiram's.
10: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
11: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
10: डेजर्ट सफारी,
11: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
10: साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
11: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410, दैट्स 0208574-8410।
12: साउथहॉल ट्रेवल, at all protected.
13: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
14: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
15: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips, crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
14: Crunch cannot wait, so visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलो पॉट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड, और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply। sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027, book before the end of July and get up to 400 off। Call Sonatours on 0208951011।
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

स्वागत है मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में श्रोताओं का। और ये दूसरा दौर भाई चिंतन से शुरू होता है, थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और चिंतन शुरू करने से पहले भाई आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच महिलाओं का टेस्ट मैच खेला जा रहा है लॉर्ड्स के मैदान में। पहला मैच महिलाओं का भाई ये कहते हैं कि लॉर्ड्स के मैदान में तो ये पहला ही टेस्ट मैच है महिलाओं का। आज से 13 जुलाई तक ये मैच खेला जाएगा। बता दें कि इंग्लिश वेमन ने टॉस जीता है और उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया है। स्कोर के आंकड़े हम आगे चलकर आपको बताते रहेंगे, लेकिन ये एक बड़ी भाई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना मानी जाएगी, क्योंकि बरसों पहले आज ही के दिन पुरुषों का भी पहला मैच जो है क्रिकेट का वो लॉर्ड्स के मैदान में खेला गया था। आइए चिंतन सुनवाते हैं आपको। आज के चिंतन के लिए आलेख एक बार फिर से हमें भिजवाया है वुल्वरहैम्प्टन से डॉक्टर सत्यव्रत शर्मा जी ने। कहते हैं, भारत के एक गांव में मैं किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने गया था। मेरे साथ मेरा एक मित्र भी था, विदेशी। उसने देखा कि शव यात्रा में यानी फ्यूनरल प्रोसेशन में जो लोग जा रहे थे शमशान की ओर, उन सब के हाथों में थोड़ा बहुत ईंधन था, लकड़ी या जो गोहे होते हैं भाई वहाँ शव को जलाने के लिए छोटे गांवों में, ऐसे ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है जो वहीं की प्रोडक्ट होता है। तो जो उपले बनाए जाते हैं गोबर से और फिर उनको जला करके किचन से लेकर के कई जगह पर उनका इस्तेमाल होता है जलाने के लिए, आग जलाने के लिए। तो हर व्यक्ति जो प्रोसेशन में था, जो शव यात्रा में शामिल था, अपने साथ दो उपले हाथ में लेकर के या सर पे रख करके चल रहा था। विदेशी मेहमान हैरान था, ये लोग क्या लेकर जा रहे हैं। तो मैंने उसे समझाया कि शव दाह के लिए यानी डेड बॉडीज को जलाने के लिए हमारे यहाँ जो ईंधन इस्तेमाल होता है वो हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा अपने घर से लेके आता है, परिवार के प्रति संवेदना जताता है, मृतक के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता है और इस काम में वो परिवार का हाथ बटाता है। कमाल है, यानी शव दाह में भी यानी क्रेमेटोरियम में क्रेमेशन के काम में भी सहयोग देते हैं लोग, कंट्रीब्यूट करते हैं लोग। तो मैंने उसे समझाया कि ये सिलसिला जन्म से ही शुरू हो जाता है। गांव में जो कोऑपरेटिव फीलिंग्स हैं वो जन्म से ही शुरू हो जाती है। व्यक्ति जो है जब पैदा होता है, बच्चा शिशु, तो वो पूरे गांव की जिम्मेदारी माना जाता है। इसलिए लोग अलग अलग तरीकों से जिस घर में जिस परिवार में बच्चा पैदा होता है सहयोग देते हैं, शगन के रूप में, गिफ्ट के रूप में, आशीर्वाद के रूप में। फिर ये सिलसिला चलता रहता है, उसके हर काम में कॉन्ट्रीब्यूशन पूरे गांव का। शादी होती है तो शगन के रूप में लोग पैसा देते हैं, बेटी की विदाई में, बेटी की शादी में पूरा गांव जिम्मेदारी निभाता है। बारात आती है तो पूरा गांव खिलाता है, पूरा गांव लुक आफ्टर करता है। एक परिवार की बेटी पूरे गांव की बेटी मानी जाती है। इसके बाद और भी कई ऐसे अवसर आते हैं। अब देखिए, दर्जी कपड़े सीता है, अनाज नहीं उगाता है, लेकिन जब फसल कटती है तो उसके घर पर अनाज पहुंच जाता है पूरे गांव के जमींदारों की ओर से। चरमकार जूते बनाता है, पूरे गांव को जूते पहनाता है। अनाज नहीं उगाता है लेकिन फसल कटते ही उसके हिस्से का अनाज उसके घर पहुंच जाता है। पूरा गांव मिलकर के एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाता है और कोऑपरेटिव की जो विचार है, धारा है, कोऑपरेशन का जो विचार है वो यहीं से शुरू होता है। अब तो बड़े बड़े कारखाने कोऑपरेटिव रूप से चल रहे हैं, सहकारिता का विचार
भारत के गांव से शुरू होता है। लोहार लोहे का काम करता है, अनाज नहीं उगाता है, और उसके घर भी अनाज समय पर पहुंच जाता है। जो जिस काम को करता है पूरे गांव के लिए करता है, सिर्फ अपने लिए नहीं करता है। आज भी ये परंपरा देखी जा रही है। तभी तो भारत का वो श्लोक, वो वही संवाद, वो मुहावरा जो मैं कई बार दोहरा चुका हूं, डॉक्टर सत्यव्रत शर्मा कहते हैं कि आपका वही विचार मैं आज के चिंतन में भिजवाता हूं, वसुधैव कुटुंबकम। जब पूरा एक गांव परिवार की तरह हो सकता है, तो भारतीय शास्त्र तो पूरे संसार को, पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में बताते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। तुम्हारी आवश्यकताएं सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, हर कोई जिम्मेदार है आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। मिलजुल कर दायित्व निभाएं, एक दूसरे के काम आएं, यही सहकारिता है, यही कोऑपरेशन है, यही सहयोग है।

0: कोऑपरेटिव विचारधारा, सहकारिता का विचार। गांव में ये भावना देखी जाती है, पूरे विश्व में होनी चाहिए ना, साथ ही हाथ बढ़ाना। आज का चिंतन, आज का विचार,
1: चिंतन चिंतन।
0: हमारी प्रार्थनाएं सामूहिक हों, हमारे लिए आशीर्वाद भी सबके लिए समान मिले। जरूरतमंद कहीं भी हो, मजबूर कहीं भी हो, दुखी आहत मुसीबत में कोई कहीं भी हो, मदद हर तरफ से उसके लिए उपलब्ध होनी चाहिए। हमारे भाई एक अमीन चतुर साहब लिखते हैं कि आज जुमा है, जुमा मुबारक हो। लेट्स आवर हार्ट्स यूनाइट इन प्रेयर्स फॉर द ऑप्रेस्ड। अल्लाह उन्हें स्ट्रेंथ दे भाई, जरूरतमंदों को, और पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा राज्य, पूरा देश, पूरा विश्व उनके बारे में सोचे जो संकट के दौर से गुजर रहे हैं, जो जरूरतमंद हैं, जो मजबूर हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं। आज का चिंतन भाई हमारे बहुत सारे श्रोताओं का पसंदीदा है, साबित हो रहा, वही सब लोग लिख करके भेज रहे हैं। वत्सला जी खासकर संस्कृत में हमारी चिंतन की प्रशंसा लिखती हैं। किसी श्लोक

0: तो मनुष्यों का जो धर्म है वो श्रेष्ठ है, इसका अर्थ ये निकलता है। और परम धर्म जो मनुष्यों के लिए है, प्राणियों के लिए है, वो है एक दूसरे के काम आना। सुनीता शर्मा जी, आपको अच्छा लगा आज का चिंतन, गीत भी पसंद आया, थैंक यू। मैं बता दूं आपको कि आज के चिंतन के लिए आलेख हमें वुलवरहैम्पटन से डॉक्टर सत्यव्रत शर्मा ने भिजवाया था। राजीव पटेल कहते हैं कि मैं तो चिंतन का इंतजार करता हूं, प्रोग्राम तो आपका शुरू से सुनता हूं, लेकिन प्रतीक्षा रहती है चिंतन की, अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। मिल्टन कीन से आपने लिखा है। शेखर जी, आपका संदेश भी मिला है, थैंक यू वेरी मच। देशराज बैसन साहब कहते हैं, कभी कभी हर गीत आपका जो सुनता हूं और पुराना गीत आता तो ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए बजाया जा रहा है। होता है, मैं एक सत्संग में जाया करता था तो वहाँ एक महात्मा जी प्रवचन करते थे और वो जो भी बात कहते मुझे ऐसा लगता जैसे मुझे निशाना बनाकर वो बात कही जा रही है, मुझे समझाया जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है कि कुछ सीख ले, कुछ कर ले। भाई, इस तरह से अगर हम लेते हैं हर बात को तो नेचुरली वो असर करती है। अनिल सोनी साहब वियाना में सुन रहे हैं, रागिनी आपका संदेश मिला, थैंक यू वेरी मच। और ये दूसरी रागिनी है, एक रागिनी आज अपना जन्मदिन मना रही है। रागू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपकी मम्मी, आपकी नानी, आपके मामाज, आपके कजन्स, आपके परिवार के सभी लोग और आपका भाई नॉर्वे से आपको मंगल कामनाएं भिजवा रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू। निर्मला जी, थैंक यू वेरी मच। सहर, महेंद्र पटेल, आनंद तोमर, आंटी जी कहती हैं सलाम वालेकुम, जजाकल्ला। आप हमें मुस्कुराहट देते हैं, हंसी देते हैं, आपकी चटपटी बातें सुनकर के मैं हंसती हूँ, पूरा दिन अच्छा बन जाता है, थैंक यू आंटी जी। भाई, चिंतन समेटने से पहले याद दिला दूं कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन, चिंतन।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. एक पाउंड के बदले 127.6 रुपीस, इंडियन रुपीस दे रहे हैं और कहते हैं भाई भारत पैसे भिजवाने का सही समय है, सही अवसर है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द SBI योनो मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Leica Radio.
2: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: फीफा फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है, महाकुंभ है फुटबॉल का, खचाखच भीड़ देख करके लगता है भाई फुटबॉल के दीवाने दुनिया में बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी संख्या में। और ये वर्ल्ड कप चल रहा है तो कल के मैच का नतीजा तो आप जान चुके हैं कि भाई फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हरा करके अब सेमी में जगह बना ली है। अब इनके मुकाबले में बता दूं कि आज जो दूसरा क्वार्टर फाइनल का मैच खेला जा रहा है वो है स्पेन और बेल्जियम के बीच, और इनमें से जो टीम जीतेगी वो मंगलवार को फ्रांस से भिड़ेगी। तो साहब इंतज़ार कीजिए, शाम को मैच खेला जाएगा 8 बजे, देखिएगा या फिर लाइक नेटवर्क से जुड़े रहिएगा, हम हर मैच के बारे में जानकारी देते रहते हैं।
2: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
0: और भाई रैक लॉ वाले हमारे जो स्पॉन्सर हैं वो कहते हैं कि अगर आप हमसे संपर्क करें तो 15 मिनट्स की फ्री लीगल एडवाइस के अधिकारी हैं आप, अगर आप लाइका मेंशन करेंगे तो संपर्क करते हुए रैक लॉ को कॉन्टैक्ट करें और लाइका शब्द कहें तो यू आर एंटाइटल्ड टू रिसीव 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस।
2: दिस इज लाइका गोल्ड।

0: बैक टू बैक दो गीत हमने परोसे आपको। और भाई अब गीत संगीत का ये सिलसिला आगे बढ़ाते हुए याद दिला दूं आपको कि आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम ऑन लाइका रेडियो नेटवर्क, लाइका गोल्ड के माध्यम से।
1: लाइका रेडियो नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग इन ग्रेटर लंदन, ग्रेटर मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स विद द यूकेस बिगेस्ट एशियन हिट्स।
2: ये है लाइका गोल्ड।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

कुछ गीत संगीतकारों की पहचान बन जाते हैं। ओपी नैयर साहब ने कुछ ऐसे गीत बनाए, ऐसी धुने रची, कानों के रास्ते सीधे दिल में उतर गईं। और कभी कभी वो इतनी मुश्किल लगती है साहब, मैं कभी कभी हारमोनियम पर बजाने की कोशिश करता हूँ तो कैसे कठिन स्वर लगाए ओपी नैयर साहब ने।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: What a song, भाई ओपी नैयर की बनाई धुन पर हमसाया फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में। और वन भाई, जैसे मैंने कहा कि कुछ गीत ऐसे हैं जो बार बार सुनने पर भी लगता है कि कुछ नयापन है उनमें। दिस वॉज वन ऑफ देम। हमारे बहुत सारे श्रोताओं को अच्छा लगा है, थैंक यू वेरी मच। और भाई अब बुशी से जगदीश जी आपका संदेश मिला, अनिल सोनी जी थैंक यू, और सिलाव वाली रानी जी, जैस्मीन आपका संदेश समय पर मिल जाता है, लगातार आप जुड़ी हैं। और हमारे खान साहब, थैंक यू वेरी मच खान साहब, मोहम्मद खान आपका संदेश भी मिल गया है, आप जुड़े हुए हैं लाइका रेडियो नेटवर्क के कार्यक्रमों के साथ। सिलाव से पम्मी हमारे साथ रहते हैं बिल्कुल भाई हर प्रोग्राम में। और अरुणा भूपेंद्र पटेल, थैंक यू वेरी मच, आपका भी संदेश मिल गया है। कुछ नए श्रोता आते हैं भाई तो उनका भी स्वागत है, और जो कुछ पुराने कभी कभी आते हैं, कंचन अग्निहोत्री आपका संदेश मिल गया है, आप सुनती हैं प्रोग्राम को, सराहती हैं, ये बात हमें भाती है। और क्रोइडन में महेंद्र पटेल, आनंद तोमर जी आपका संदेश भी यहाँ है स्क्रीन पर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
2: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट। और भाई हमारा नया एपिसोड आ गया है लाइका एक्स्ट्रा पर, जो है अब आप पॉडकास्ट देखते हैं, जुड़ जाइए इनके साथ भाई। ईस्ट अफ्रीकन एशियंस के बारे में इस बार नया एपिसोड है, और ये प्रकाश डालता है उन घटनाओं पर, उन भाई उस इतिहास पर जिसमें अपने देश से उखड़े और जाकर के ईस्ट अफ्रीका में लोगों से वहाँ जुड़े, वहाँ काम किए, फिर वहाँ से फिर उखड़े तो अपनी आइडेंटिटी, अपनी जड़ों से जुड़े रहे, और किस किस संघर्ष का सामना किया और कैसे कामयाबियाँ हासिल की, बहुत सारी बातों पर रोशनी डाली गई है। ज़रूर देखिएगा लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट, अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। लाइका एक्स्ट्रा। Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
0: ये है लाइका गोल्ड travelhubworld.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
5: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
4: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
5: Call us today on 0208-706-0915. That's 0208-706-0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
4: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 711,000 pounds.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
0: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
5: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HamariRam10 for a 10% discount on all shows and tickets.
0: Exclusive radio partner, Laika Star Radio.
8: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
6: London, good news. Aapka favorite iTech, up TRS Cash and Kerry, South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.

पगड़ी मेरी चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट जा

0: पवित्र पापी फिल्म का गीत, प्रेम धवन का गीत और संगीत भाई, ले दे सैया ओढ़नी पंजाबी तिलेदार, मस्ती भरा गीत। और ये गीत भाई जन्मदिन मनाने वालों के नाम कर देते हैं। आज सुनील गावस्कर अपना जन्मदिन मना रहे हैं। क्रिकेटर भाई, क्रिकेट की बात आई तो ये भी बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच महिलाओं का पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स के मैदान में शुरू हो चुका है। भारत बैटिंग कर रहा है, 54 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। अभी तक टेस्ट मैच है ये, जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है, आराम से खेलिए ना, तो हम आपको स्कोर के आंकड़े बताते रहेंगे। भारत का स्कोर भाई, इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीता और बॉलिंग करने का फैसला किया। भारत की महिलाओं ने 54 रन बनाए हैं, 2 विकेट गंवाए हैं। खेल आगे बढ़ेगा, स्कोर हम बताते रहेंगे।
1: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप। सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: और लेमफाई के रेट्स इस समय जो 1 पाउंड के बदले वो राशि दे रहे हैं विभिन्न करेंसीज में, नोट कीजिए, भारतीय रुपए दे रहे हैं वो 127.93 फॉर 1 पाउंड, पाकिस्तानी 372.78, श्रीलंकन 449.75 और बांग्लादेशी टके 165.23 एंड अफगानी 87.23।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: LIKA Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Well, the gold is trading at the rate of 98.48 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there. Southall Travel. Auto protected.
3: आपके सामने एक रेड बटन है. नहीं दबाना था.
4: The madness is back. Dhamaal 4.
5: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
4: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamaal 4. Directed by Indra Kumar.
6: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
4: Watch the biggest family entertainer Dhamaal 4 in cinemas now.
7: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आगे कैसे आ जाता.
8: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
9: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
12: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
13: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
14: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
13: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
14: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
13: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
14: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
15: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
16: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
15: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
17: स्प्रिंग इन टू द सनशाइन ऑन लाइका रेडियो नेटवर्क.
18: ये गीत हमें खबरों तक लेकर चलेगा, लेकिन गीत तक लेकर चलेगा ये लतीफ़ा जो राजेंद्र राज ने भिजवाया है. कहते हैं कि डॉक्टर के पास पेशेंट आया, कहता है डॉक्टर साहब मुझे लंबी उम्र की कोई दवाई दे दो. डॉक्टर ने कहा शादी कर लो. कहता है शादी करने से उम्र लंबी हो जाएगी. डॉक्टर कहता नहीं, लंबी उम्र की ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी.
19: तेरे हुस्न की,
18: तेरी लंबा जीने की हुई इच्छा खत्म हो जाएगी.
19: कुछ कहते हुए भी
18: डरता हूं कहीं भूल से ये ना समझ बैठो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं.
19: कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे

0: क्या है चित चोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चित चोर?
1: You sing like Kishore, but शादी का दिन.
0: Oh yes, September 8.
1: Oh, very late.
0: Darling, wait.

लग जा गले ए लग जा गले दुनिया चले छम छम छम छम छम छम ए गढ़ हम तुम पे दिल निसार करता है रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है रोज

0: भाई क्या गीत बना, कुछ हटकर बना, कुछ कटकर बना, कुछ बटकर बना, लेकिन इसके पीछे भाई जो संघर्ष की कथा थी वो भी इसके संगीतकार बिदु साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि कैसे इस गीत की रचना हुई थी, कैसे नाजिया हसन की तलाश पूरी हुई थी और कैसे फिर भाई लंदन में उनके साथ कुछ गीतों की रिकॉर्डिंग का सिलसिला बना था। तो साहब ये गीत आपने नाजिया हसन की आवाज़ में सुना, दुख की बात है कि यंग एज में ये गायिका जो है नहीं रही, वरना तो साहब और ऐसे कुछ गीत सुनने को मिलते। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके पाउंड का क्या रेट दे रहे हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK, for £1 they are giving in Indian currency 127.6 rupees maximum. 127 rupees aur 60 paise is samay de rahe hain aur keh rahe hain ki bhai you can transfer via branch online or by using the SBI Yono mobile app. पर ध्यान रहे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई।
2: ये है लाइक अ गोल्ड।

0: लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और आशा भोसले तीनों बहनों ने आवाज दी थी। इस गीत को रवि साहब की बनाई धुन पर गृहस्थी फिल्म का गीत था, जिसके गीत लिखे थे भाई फिल्म के शकील बदायूनी ने। भाई शकील साहब इस सप्ताह के कलाकार हैं, और आपको बता दूं कि बदायूं उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ 3 अगस्त 1916 में। 1936 में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, और भाई यूनिवर्सिटी में ही वो जो इंटर कॉलेज और इंटर यूनिवर्सिटी मुशायरे होती थी, वहाँ से इनकी शायरी की शुरुआत हुई। और जब ये भाई दिल्ली मूव हुए तो ये मुशायरों में शिरकत का सिलसिला जो है और आगे बढ़ा। वैसे 1940 में उनको एक अवार्ड मिला था, अरे भाई और तो बहुत सारे अवार्ड मिले, एक अवार्ड उनको मिला, उनकी शादी हुई, निकाह हुआ सलमा के साथ, तो दूर की रिश्तेदार थी इनकी। लेकिन जब ये मुंबई मूव हुए तो साहब इनका जो टैलेंट है वो निखर के फिल्मों के माध्यम से घर घर तक और जन जन तक पहुंचा। आर्टिस्ट ऑफ द वीक शकील बदायूनी साहब, उनका लिखा गीत सुनवाते हुए आगे बढ़ते हैं। ये लाइका रेडियो नेटवर्क है, आप सुन रहे हैं मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट dairyvalley.net।

भाई बात यह, गीत तो अच्छा है लेकिन ये अब कल परसों ही बजा है तो इसे इतना जल्दी और उसी टाइम में बजा है, डिफरेंट टाइम में बजा हो ना, यानी सुबह के कार्यक्रम में काजल ने बजाया और फिर ये कंप्यूटर साहब ने गीत जो है मेरे कार्यक्रम में रख दिया। भाई थोड़ा गैप कर देना, मैं जानता हूँ कि देर इज़ अ लिमिट। आइए ऐसा गीत सुनवाते हैं जो कुछ दिन पहले बजा हो और जिसकी

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और बहन भाइयों, गीत हमने आपको सुनवाया परवीन सुल्ताना की आवाज में, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। केटला बरसनी थी गीचे दीकरी, नन ऑफ योर बिजनेस। 10 जुलाई 1950 में जन्मी थी भाई। बहुत कम गीत गाए फिल्मों के लिए इन्होंने, लेकिन वैसे भाई ये गायिका के रूप में बड़ी प्रतिष्ठित हैं और बहुत सारे अवार्ड इनके नाम हैं। भारत सरकार से भी पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं। 10 जुलाई 1950 में इनका जन्म हुआ था। आज जन्मदिन मनाने वालों में कुछ और नाम भी शामिल हैं, और भाई बताएँ तो भारत के रक्षा मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी भी आज ही के दिन जन्मे थे। 10 जुलाई 1951 में उनका जन्म हुआ था और चंदौली डिस्ट्रिक्ट में जन्मे थे वो। इसके अलावा भाई आज सुनील गावस्कर अपना जन्मदिन मना रहे हैं, मुंबई में 1949 में जन्मे थे 10 जुलाई को। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न से ऑफ द डे टू भाई जन्मदिन मनाने वालों को। और हाँ, सिल्विया और म्यूरियल कह रही है हमारी बुआ का भी तो जन्मदिन आज ही है, तो भाई आपकी बुआ को भी हैप्पी बर्थडे। और कहती है कोई अंग्रेजी गीत सुना दीजिए। भाई अंग्रेजी भी हिंदी में सुनाएंगे हम, तो सुनते रहिएगा। आपकी बुआ जी को आपकी मम्मी की ओर से, पापा की ओर से, आपके सारे परिवार की ओर से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और किसका जन्मदिन है भाई आपके परिवार में, घर में किसी का जन्मदिन है तो हमारी ओर से शुभकामनाएँ स्वीकार कीजिएगा। जो गीत पसंद आए उसे अपने नाम कीजिएगा।
3: ये है लाइका गोल्ड।
4: दिस सुपर हिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस। विद अ रेंज ऑफ ग्रेन्स एंड फ्लेवर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यू कैन मेक एवरी मील मेमोरेबल।

ना तू जाने ना मैं जानू, भाई मैं तो जानता हूँ हवा कैसी चले, हवा जब चलानी होती है बहुत गर्मी होती है तो भाई बस थोड़ा सा काम करना होता है, पंखे का बटन दबाना होता है, बटन घुमाना होता है, जो मर्जी कहिए, भाई बात यह है हवा चले कैसे, घटा उठे कैसे, ये नहीं मालूम। लता जी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे, जैसे मौसम का हाल बताया जा रहा था।

0: जाने वही जाने राम जाने। भाई राम से याद आया, प्रभु राम का चरित्र जो है मंचित किया, मंचन हो रहा है उसके एनिमा रंगमंच पर। रावण भी आ रहे, कहते हमारे राम देखा कल, बहुत लोगों ने देखा और बहुत सराहा, बहुत सारे लोगों का संदेश आया, वही अच्छा लगा। हमारे राम आपके राम? अरे नहीं साहब, रावण भी कहता है हमारे राम। आशुतोष राणा रावण की भूमिका निभा रहे हैं, कहते भाई राम तो सबके हैं, किसी के इष्ट हैं, किसी के भाई क्या कहे शत्रु हैं रावण के, किसी के आराध्य हैं, किसी के स्वामी हैं।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel का एक संदेश भाई हम आपको याद दिला रहे हैं बार बार, और वो Southall Travel वाले कह रहे हैं कि we are pleased to announce that the FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call Southall Travel for the most competitive Dubai deals. उनका नंबर है 0208-574-8410 and they are at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on travelhubworld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call travelhub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com.
2: travelhub best service with unbeatable price
0: at all protected.
2: visit travelhubworld.com.
0: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं।
3: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
3: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
3: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
5: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
6: London, good news! आपका फेवरेट iTech अब TRS Cash and Carry Southall में. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridge Way, Southall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड, और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
8: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
9: 4 beers, please, garçon!
8: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
1: Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
10: Budget tight, पर ब्रांड का इंपैक्ट बड़ा चाहिए? Leica Radio और Leica Gold लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@leicaradio.com. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: Oh,
11: और ये गीत आपको याद दिलाएगा सलमान खान की। नहीं साहब, एक और अभिनेता इस गीत से जुड़े हैं, आलोक श्रीवास्तव, नहीं आलोक नाथ। आलोक नाथ भाई आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, 70 के हो गए हैं आज, 10 जुलाई 1956 में जन्मे थे। अब कौन है आलोक नाथ भाई? इस फिल्म में मैंने प्यार किया, हीरोइन के पिताश्री की भूमिका जो निभाते हैं और जो शर्तें लगाते हैं सलमान खान के सामने, वो आलोक नाथ आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न।

मैंने प्यार किया फिल्म में जो भाग्यश्री के पिता की भूमिका निभाते हैं भाई, और भी बहुत सारे फिल्मों में आपने कैरेक्टर रोल्स में उन्हें देखा है, आलोक नाथ आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, ही इज 70 टुडे। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू जन्मदिन मनाने वालों को भाई। और इसके अलावा भाई आज 10 जुलाई के दिन का और भी महत्व है। आपको बताएं कि एक भिखारी ठाकुर नाम के बहुत बड़े कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी रचनाओं ने समाज सुधार के लिए और लोक संस्कृति को नई पहचान देने के लिए बहुत गहन और रिच साहित्य लिखा। और भाई आज वन महोत्सव का समापन हो रहा भारत में ना, ये पेड़ लगाने का एक त्यौहार शुरू हुआ 1950 में, वन महोत्सव आज उसका भाई समापन यानी आखिरी दिन है। उद्देश्य है इसका वृक्षारोपण यानी नए दरख्त लगाना, पर्यावरण का संरक्षण और माहौल को शुद्ध बनाए रखना, ये 10 दिन का त्यौहार जो है आज समापन हो रहा है। और भाई आज के दिन के साथ और भी जुड़ी हैं कुछ यादें, आगे चलकर चर्चा करेंगे। फिलहाल तो ये गीत समेटें, मैंने प्यार किया। भाग्यश्री।

0: सूर्य बड़जात्या के निर्देशन में बनी थी भाई ये फिल्म। और ये जो राजश्री की फिल्में होती है ना, इनका संगीत बड़ा हटकर होता है। संगीतकार थे राम लक्ष्मण।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a
3: gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और लीजिए साहब, लेमफाई के रेट्स मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। एक पाउंड के बदले टुडे दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 128 रुपीज एग्जैक्टली, पाकिस्तानी रुपए 373.18, श्रीलंकन 450.48, बांग्लादेशी टकाज 165.46 और अफगानी 87.22।
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Well, the gold is trading at the rate of 98.48 pounds per gram.
3: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: बताओ कितना हमसे प्यार है, और देशराज जी कहते हमें तुमसे प्यार कितना हम बता नहीं सकते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। और आपने भाई और भी जानकारी भेजी है, बहुत सारी फिल्मी जानकारी, जैसे हमारे बाबी बाली ब्रह्म भट्ट हैं फिल्मी विद्वान, वैसे आप भी बहुत कुछ जानते हैं फिल्मी इतिहास के बारे में, फिल्मों के बारे में। तो देशराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बता दें बहनों भाइयों, बाली ब्रह्म भट्ट होंगे आपके मेज़बान 1 बजे की खबरों के बाद, और वो लाते हैं बहुत सारी फिल्मी सामग्री जुटा करके, तो उनका भी साथ निभाइएगा। आज 10 जुलाई को कहते हैं कि जोरा सैगल की पुण्यतिथि है भाई, एक बुजुर्ग अभिनेत्री, लेकिन यंग एज से वो मंच से जुड़ी रही, और बहुत सारी फिल्मों में वो लंबी बड़ी उम्र की एक महिला के रूप में आती हैं, पर छा जाती हैं अपनी डायलॉग डिलीवरी से। 27 अप्रैल 1912 में उनका जन्मदिन हुआ था, और 10 जुलाई 2014 में उनका निधन हुआ, देखिए 98 बरस की उम्र में। तो 98 के 102 बरस की उम्र में भाई, हाँ, तो 102 साल की उम्र में जोरा सैगल का निधन हुआ। क्या बात है, उनकी ऊपर पिक्चराइज कोई गीत तो मैं नहीं बजा सकता हूँ, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी बाली भाई लेकर के आएंगे। इसके अलावा साहब नैना शाह भी कुछ सुझाव दे रही हैं, थैंक यू वेरी मच सर आँखों पर। और भी हमारे श्रोताओं के संदेश हैं भाई, जिन्होंने संदेश भेजे और मैं उनका धन्यवाद नहीं कर पाया, उन्हें थैंक्स कहते हुए आगे बढ़ता हूँ। कार्यक्रम का समापन नज़दीक है।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
2: London, the wait is over.
3: Haldiram's is now open at Leicester Square, Central London.
2: The authentic taste of India has finally arrived right in the heart of London.
3: From Raj Kachori to Chole Bhature, Pao Bhaji,
2: Parathas, sweets and so much more. Your favorite Indian flavors are now here.
3: Come with family, come with friends and enjoy the taste, the vibe and the celebration.
2: Haldiram's, now open at Leicester Square, Central London.
4: Haldiram's.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube, prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
9: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
10: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स।
9: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
11: एट ब्रेस्ट कैंसर नाउ वी नो चेकिंग योर ब्रेस्ट्स कैन फील डॉन्टिंग, बट इट्स एज सिंपल एज TLC, टच लुक check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
12: Lotto from the National Lottery now gives you 2 chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. 1 ticket, 2 chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you.
4: See website for lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
1: The Ravi Sharma Show on Leica Gold.
0: और लीजिए साहब, आपसे इजाजत लेने का समय आ गया. खुश रहो, आबाद रहो, हमारे साथ रहो और हमारे बाद भी रहो. खुश रहो.

And that was two beautiful songs. ये सब हंसने वाला मामला होता है. जैसे कि फ्राइडे है, इट्स अ ब्यूटिफुल सनी डे. देर इज फीफा वर्ल्ड कप गोइंग ऑन, देर इज विंबलडन गोइंग ऑन, एंड एवरीबडी इज ग्लू टू द टेलीविजन एंड कीपिंग इट म्यूटेड एंड लिसनिंग टू लाइका गोल्ड. थैंक यू सो मच. आपके सब मुझे मैसेजेस मिले. प्रकाश सूथर जी ने मुझे एक बड़ी थाली भेजी. मैंने कहा नहीं, लंच के लिए नहीं, डिनर के लिए लूँगा मैं, क्योंकि ऐसी थाली मैं खाऊँगा तो सो पड़ूँगा यहीं पे. और जैस्मिन जी, थैंक

0: हमी को मत घेर जरा,
1: हम सब चोर हैं समझ का है फेर जरा।
0: अरे चोर सारी दुनिया हमी को मत घेर जरा,
1: हम सब चोर हैं समझ का है फेर जरा।
2: चलता है जल कोई यहाँ है फिकर किसे,
3: आज का ठिकाना करो कल की खबर किसे।
4: हमको हंसते जमाना चलता है, चोर बनो या मोर।

0: परवाह न रे रब
1: चलता है चले कोई यहाँ है सितर किसे आज का ठिकाना करो कल की खबर किसे
0: हमको हंसते थे जमाना चलता है चोर बनो

0: There you go, beautiful songs with Hasna, Hasana, Haste. ये सब गाने इस आवर में,
1: हंसना सीखो, हंसते हंसते
0: और हंसते रहो.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound, US dollars 1.3418, Indian rupees 127.95, Pakistani rupees 373.1, Afghanis 87.21, and for one sterling pound, Kenyan shillings 173.38.
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Leica Gold.
2: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £98.29. £98.29 per gram.
2: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
4: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
5: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious, everything for everyone.
6: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
7: Lights on, shutters up, staff ready.
6: But today's customers don't start on the high street.
7: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
6: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
7: They walk into your competitors.
6: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
7: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
8: Gorgeous Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
9: Discover Gorgeous Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
8: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
9: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
8: Gorgeous Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
9: Visit Gorgeous Couture.
10: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर furniture.co.uk पर जाएं.
11: आपके सामने एक रेड बटन है.
12: दबा दिया.
11: नहीं दबाना था.
13: The madness is back. धमाल 4.
14: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
13: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4. Directed by Indra Kumar.
15: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
13: Watch the biggest family entertainer, Dhamal 4, in cinemas now.
10: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
12: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
16: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
17: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स।
16: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
18: sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sonatours on 0208 951 0111.
19: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
20: London's biggest classics all day. This is Like a Gold.

व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड अ मीनिंगफुल सॉन्ग. और फिल्म थी कठपुतली. आगे जो गाना है मैंने जो चुना है आपके लिए इज खून भरी मांग. नितिन मुकेश और साधना सरगम इन्होंने गाया है हंसते हंसते. अभी होता क्या है कि सारे गाने जितने भी आपने सुने मोस्ट ऑफ देम आर रफ़ी साहब और किशोरदा, तो उनके गानों के बाद एक नितिन मुकेश का गाना ज़रूरी है. सो सुनते जाइएगा, लुत्फ उठाते जाइएगा. एंड नेक्स्ट आवर वी गोना रिमेंबर असद भोपाली, अ ग्रेट राइटर. उनकी स्टोरी सुनकर आप प्रभावित हो जाओगे. Yes, next hour, a man who wrote so many songs, and unka climax jo hoga, that'll bring tears to your eyes. Asad Bhopali, next hour.

कितने प्यारे ये दो गाने और वैरायटी देखो लिखने की जो वर्सेटिलिटी आप नज़र आती है इन दो गानों में। उस्तादों के उस्ताद 1963, अपना बना के देखो फिल्म 1962 की, और रफ़ी साहब ने इतनी खूबसूरती से गाया और रवि का संगीत था इसमें, राज़े दिल उनको उनसे छुपाया ना गया। एंड देन मिलते ही नज़र तुमसे हम हो गए दीवाने, वाह वाह वाह, वो भी म्यूजिक डायरेक्टर रवि का संगीत। लेकिन गाने लिखे किसने उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक मुंशी अहमद खान साहब थे, ही वॉज अ टीचर ऑफ अरेबियन एंड पर्शियन लैंग्वेजेस। उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे असदुल्ला खान को ये ज़बानें बोलनी लिखनी पढ़नी सिखाई। असदुल्ला खान, हम उनको जानते हैं विद द नेम असद भोपाली बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन भोपाल, हेंस असद भोपाली। नाउ उनके बारे में जितना भी कहूँ उतना कम है। फादर जैसे मैंने कहा द टीचर ऑफ अरेबियन एंड पर्शियन लैंग्वेजेस मुंशी अहमद खान, एंड उनके भाई जो थे ये कमर जमाली, ही वॉज एन उर्दू पोएट। सो पूरा माहौल ही ऐसा था जहाँ पे पोएट्री और खूबसूरत लैंग्वेजेस घर में थी। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। वंस अपॉन अ टाइम फाजली ब्रदर्स देवर फिल्म मेकर्स, उन्होंने एक फिल्म बनानी थी दुनिया, और उनका जो लिरिसिस्ट था आरजू लखनवी, उन्होंने दो गाने लिखे फिल्म के, एंड देन ही माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन। सो फाजली ब्रदर्स वर स्टक, दे वर लुकिंग फॉर न्यू लिरिसिस्ट्स फॉर दे फिल्म दुनिया। उनके एक दोस्त थे सुगम कपाड़िया। सुगम कपाड़िया ही वॉज अ बिजनेस मैन हु ओन्ड फ्यू सिनेमा थिएटर्स, एंड भोपाल में उनकी एक इनका एक सिनेमा हॉल था। तो उन्होंने फाजली ब्रदर्स को कहा कि देवर मैनी गुड पोएट्स इन भोपाल, और वहाँ पे मुशायरे बहुत होते रहते हैं, तो उन्होंने एक मुशायरा ऑर्गेनाइज किया फॉर देम एट हिज भोपाल टॉकीज। भोपाल टॉकीज में मुशायरा चला, एंड द डे वॉज 5th of May 1949, याद कीजिएगा। दे वर इम्प्रेस्ड सो मच, असद यानी के हमारे असद भोपाली की जो पेशगी थी उस मुशायरे में, उनसे वो बड़े प्रभावित हुए। एंड द 28-year-old असद देन ट्रेवल टू बॉम्बे ऑन 18th of May, दैट वॉज 13 days लेटर इन 1949, टू बिकम अ लिरिसिस्ट इन द ग्रेट फिल्म इंडस्ट्री। असद रोट 2 songs फॉर फाजली ब्रदर्स, दो गाने इन्होंने लिखे। एंड देन इन 1950 एज्ड 29 यंग मैन, ही रोट सॉन्ग्स फॉर कपल ऑफ फिल्म्स। सो फार हिज सॉन्ग्स वर संग बाय रफ़ी साहब, सुरैया, लता मंगेशकर, शमशाद बेगम वगैरह वगैरह। तो बड़ी ब्रेक तब आई जब बी आर चोपड़ा ने, दैट्स बलदेव राज चोपड़ा, बी आर चोपड़ा ने फिल्म अफसाना बनाई, जिसकी स्टोरी स्क्रीन प्ले इट वॉज ऑल डन बाय आईएस जौहर, हमारे आईएस जौहर, दैट्स राइट। अफसाना फिल्म वॉज मेड इन 1951, जिसमें अशोक कुमार वॉज इन अ डबल रोल, ट्विन ब्रदर्स। सो इट स्टार्टेड अ ट्रेंड ऑफ ड्यूअल रोल्स दैट पर्टिकुलर फिल्म। म्यूजिक वॉज बाय हुस्नलाल भगतराम, और वो फिल्म में इन्होंने गाने लिखे, ही रोट 5 songs। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जब म्यूजिक दिया पारस मनी, इनकी डेब्यू थी पहली फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की 1963,

0: wasn't as successful as Majru Sultanpuri, Sahir Ludhianvi, Rajinder Krishan, Jaan Nisar Akhtar. क्योंकि उनको जो फिल्में मिलती थी दे वर लो ग्रेड फिल्म्स एंड उनको पूरी फिल्में नहीं मिलती थी, कुछ दो गाने तीन गाने कोई फिल्म में, हाई एंड फिल्म्स में कुछ नहीं मिला इनको. फिर क्लाइमैक्स आया इन 1989. अब इनकी उम्र कितनी थी, 68 साल की उम्र. सोचो कि एक 28 साल का नौजवान जिसने बॉम्बे में कदम रखा, नाउ ही वॉज 68 आफ्टर 40 ईयर्स. 40 ईयर्स आफ्टर हिज एंट्री इन टू बॉम्बे ही रोट सम सॉन्ग्स फॉर फिल्म मैंने प्यार किया. जी हाँ, वो गाने लिखकर ही सफर्ड पैरालिटिक स्ट्रोक. सो उनकी फैमिली उनको ले गई भोपाल. 1990 में ही गॉट अ फिल्म फेयर अवॉर्ड बट ही कुडंट अटेंड. ही डाइड ऑन 9th ऑफ जून 1990 एट द एज ऑफ 68. ही कुड नॉट कलेक्ट दैट अवॉर्ड. 35th फिल्म फेयर अवॉर्ड इट वॉज बेस्ट लिरिसिस्ट फॉर फिल्म मैंने प्यार किया. गाना था दिल दीवाना बिन सजना के माने ना. इतना खूबसूरत गाना और एक अवार्ड जो मिला उनको जिंदगी भर के काम का, उसमें वो अवार्ड ले नहीं पाए. वी आर रिमेंबरिंग असद भोपाली.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 British sterling can get you up to 127.6 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: My God, FIFA fever, and I'm suffering from that fever as well. FIFA World Cup 2026 has gone into the quarterfinals, and yesterday France beat Morocco by 2-0. And today it's going to be Spain versus Belgium at 8 p.m. And on Saturday, 11th July at 10 p.m., it's going to be Norway versus England. And Sunday at 2 a.m. is going to be Argentina versus Switzerland. Wow. This is going to be so exciting. And don't forget, you can get your 15-minute free legal advice with our sponsors, Rack Law, if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
3: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410. दैट्स 0208574-8410.
5: साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected.
6: Gajal's Couture. For every celebration, every moment, and every unforgettable entrance.
5: Discover Gajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
6: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewelry, accessories, and stylish outfits for men and women.
5: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7.

0: This hour, all the songs that you heard were written by Asad Bhopali, Asadullah Khan. He was born in Bhopal. Aaj unki 105th birth anniversary thi. And ye gaane pe unko award mila tha.
1: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.
0: ये भी गाना उन्होंने लिखा, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी ने गाया. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आसद भोपाली की लिरिक्स है. रूप तेरा मस्ताना 1972 की फिल्म थी. बहुत प्यारा गाना है. इट्स आल्सो वेरी मेलोडियस. एंड नेक्स्ट आवर व्हेन वी प्ले अ सॉन्ग ऑफ आवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक शकील बदायूनी. बड़ा अच्छा लगता है व्हेन आई टॉक अबाउट राइटर्स लिरिसिस्ट्स. दो गानों को जन्म देते हैं. आसद भोपाली

0: Oh yeah, and these two chatpate gaane right till the end of this hour chalte rahenge. I'm glad you enjoyed the tribute of Asad Bhopali and the songs that went along with it. And dusra ek gaana maine chuna hai for our artist of the week, and that is none other than Shakeel Badayuni. इतने खूबसूरत गाने इन्होंने लिखे हैं अपनी लाइफ में, और उनमें से एक चटपटा गाना मैंने ऐसे चुना है जो हमारी नज़र के सामने होता है, हमने हज़ार बार सुना है लेकिन आजकल सुनाई नहीं दिया, तकरीबन महीना हो गया. सो हम डेफिनेटली ये गाना आपके सामने सुनाएंगे और आप बोलेंगे अरे ये शकील बदायूनी जी ने लिखा था क्या. वैसी बात है तो आपको बड़ा मजा आएगा. एंड देन आगे जाते हुए हम एक गाना डेडिकेट करेंगे. क्यों? क्योंकि हमारी प्यारी मिसेस शेख ने मुझे बताया कि हमारे रवि जी हैं, रवि जी की डॉटर जो है रागिनी, रागिनी का बर्थडे है. दैट्स राइट, इट्स रागिनीज बर्थडे. ये एवरीबडी इज चीयरिंग अप. एंड रवि जी मुझे बताए बिना चले गए, मैं उनसे झगड़ा करूंगा बाद में. लेकिन फॉर रागिनी वी गोना डेडिकेट अ सॉन्ग फॉर हर बर्थडे लेटर ऑन. एंड दिस इज फ्रॉम एवरीबडी एट लाइका, दिस इज फ्रॉम मिसेस शेख, एंड दिस इज फ्रॉम माइसेल्फ एज वेल, एंड फ्रॉम डैडी, डैडी एंड मम्मी. इन्होंने एक प्यारा गाना हम सब ने डेडिकेट करना है फॉर रागिनी, विशिंग हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे. आगे सुनते जाइएगा, मैं हूं बाली ब्रह्मभट ऑन लाइका गोल्ड विद गोल्डन आफ्टरनून्स. गोल्ड आफ्टरनून्स ऑन 1035 मीडियम वेव, डीएबी, एलेक्सा, गूगल होम एंड laikagold.com. एंड द शो इज स्पॉन्सर्ड बाय जेमिन. That's right, it's the 368th day of Laika Radio Midlands, jahan pe Annika will come at 4 p.m. right up to 7 p.m. and Sandy Shah will come into this hot seat here and make it hotter for you.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 127.6. That's right, 127.6 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold.
3: Laika Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: FIFA World Cup 2026 is into quarterfinals, and today it's going to be Spain versus Belgium at 8 p.m. All the teams are really, really working hard to win this World Cup. France has won against Morocco. That was yesterday. And today, let's see what happens with Spain and Belgium. And tomorrow, Norway versus England at 10 p.m.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
0: Don't forget, you can get your 15-minute free legal advice with our sponsors, Rack Law, if you mention Laika.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is the Laika Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: Gold Afternoons with Bali Brahmbhat. Bali Brahmbhat is sponsored by Jemin Foods. Tamara Tea Time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe Tamara Najikna Asian Shops ma.
1: herald new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality eco-friendly

बेटा हो या बेटी, बाप हमेशा बेटी को बेटा कहते हैं। सो ये गाना दोनों को सूट करता है, बेटा हो या बेटी, सूरज कहूं या चंदा।

0: is tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: London, the wait is over.
3: Haldiram's is now open at Leicester Square, Central London.
2: The authentic taste of India has finally arrived right in the heart of London.
3: From Raj Kachori to Chole Bhature, Pao Bhaji,
2: Parathas, sweets and so much more. Your favourite Indian flavours are now here.
3: Come with family, come with friends and enjoy the taste, the vibe and the celebration.
2: Haldiram's, now open at Leicester Square, Central London.
4: Haldiram's.
5: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
6: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
5: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
6: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
5: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
6: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
7: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिज, है ना?
8: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जैमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
7: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जैमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
9: Mina Jewelers Best Overall Business of Wandsworth 2026. Come and find out why. 24 karat gold bars and coins without VAT at the lowest prices. Phone 0208-767-7547.
10: Have you noticed the way fans shout at football matches?
11: Oh, wake up!
10: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
12: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: कितना प्यारा गाना है एंड इट चीयर्ड एवरी वन ऑफ यू. थैंक यू लवली मैसेजेस एंड थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स एज वेल केशु और एड्रा जैसे मैसेजेस और मधु जी और सुनीता शर्मा everybody and jasmine thank you very much anita I always answer if I have time as you already know
1: like a gold the perfect soundtrack for a british summer heat wave
0: हंसते तू हमने हंसने से शुरुआत की थी और हंसते ही हम विदा लेते हैं. Have a wonderful weekend. It's Sandy Shah next. And Annika, she is on Leica Radio Midlands. Have a wonderful weekend. और ऐसे ही हंसते रहिएगा.

0: Kumar Shanwal K. Yagnik from the film 15 August. Know nothing about it, don't want to know anything about it. Hope you enjoyed the song. It's a feel-good song, gotta give it that.
1: Gold Drive with Sandy Shah.
2: Oh yeah.
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: And they are very, very, very happy at the moment because they're pleased to announce that the FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. That means you can call Southall Travel for the best Dubai deals on 0208 574 8410. And don't forget, they're atoll protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
3: Ye hai.
4: Like a gold.
5: Travelhubworld.com. Kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on travelhubworld.com. Flights and holidays. Hum se sasta kahin nahi mil sakta. Call Travelhub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com.
6: Travelhub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
6: Visit travelhubworld.com.
7: Chalo jaiye ek nava safar par.
8: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलों ने मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे कंपाला नैरोबी मुंबासा जांजिबार अने दार ए सलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स
9: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ
8: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे वधु माहिती माटे
9: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
8: 0116266481 पर वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर
10: आपके सामने एक रेड बटन है नहीं दबाना
11: The madness is back. Dhamal 4.
12: Gulabi saadi mein tu lag raha.
11: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamal 4. Directed by Indra Kumar.
13: Gulori bina chatni kaise bani?
11: Watch the biggest family entertainer Dhamal 4 in cinemas now.
14: Pata nahi aise dangerous situations mein automatically aage kaise aa jata.
15: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
16: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
15: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
17: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 0208-767-7627
1: Like a Radio Network Proud Hospitality Partner Ragasan Gold Drive with Sandy Shah
18: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है Like a Radio और Like a Gold आपकी आवाज बन सकते हैं ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@lykaradio.com
19: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m., Like a Gold and Like a Radio Midlands.

ट्रक ऊपर वाला मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त।

क्यों भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला, मर्द टांगे

0: This is Sandy Shah on Gold Drive.
1: ये है लाइका गोल्ड.
0: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: They are indeed, and they're very pleased to announce that the FCDO has lifted its advice against all-white essential travel to the Bay. Call Southall Travel for the most competitive The Bay deals on 0208 574 8410, and don't forget they're Atoll protected.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is Leica Gold.
3: Travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on travelhubworld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call Travelhub 24/7 on 0208 782 8833 or visit travelhubworld.com.
4: Travelhub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
4: विजिट travelhubworld.com.
5: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208 922 3344 24-hour line.
6: चलो जाइए एक नवा सफर पर.
7: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रिकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे. कंपाला, नैरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दारेसलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स.
8: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ.
7: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे. वधु माहिती माटे
8: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
7: 0116266481 पर. वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर.
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
10: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
11: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स. क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
10: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
12: व्हेन योर हस्बैंड्स गॉट हिज हार्ट सेट ऑन मेकिंग द डूअर अपर ओपन प्लान. Enjoy every thudding second of it.
13: Yes!
12: Be a step ahead with Barclays Premier. With our exclusive mortgage rates. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. All mortgages are subject to application, financial circumstances and borrowing history. T's and C's apply. New Barclays mortgage applications only.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Gold Drive with Sandy Shah. 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
14: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: मैं जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। फैंटास्टिक फ्राइडे में पैर थिरकाने शुरू हो गए ना, कि क्योंकि अभी पग घुंघरू बांध के सिर्फ अमिताभ बच्चन और मीरा ही नहीं नाचे, आई एम श्योर हम जितने भी लोग ये सुन रहे थे हम सभी नाचे हैं, है ना। सो बिल्कुल नाचने हंसने गाने मनाने का ये दिन है, बिकॉज दिस इज फ्राइडे एंड इसको हम लोग बनाते हैं साथ मिलके फैंटास्टिक, क्योंकि पूरा सपना निकल गया। कंग्रेचुलेशंस, एक और सपना आपने ज़िंदगी का निकाला, गिरते पड़ते हंसते रोते सक्सेसफुल होते हुए कुछ चीज़ें पीछे छोड़ते हुए आप पहुँचे हैं फ्राइडे तक। एंड फ्राइडे इवनिंग मतलब आहा आ गए ना हम, आहा उफ या क्या बात है, बढ़िया से गीतों के साथ में इस वक्त को साथ में सेलिब्रेट करने के लिए। अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, सभी लोग अपनी हाजिरी लगवाने आ गए हैं, सारे के सारे धुरंधर, मतलब गाने भी यहाँ पे मैं सुनाऊं हैं और फिर यहाँ पे चिट चैट जो मेरी चटर पटर है वो भी मैं करूं, है ना, और हाजिरी भी मैं ही लगवाऊं। सब आ रहे हैं हमारे धुरंधर, कह रहे हैं लगाओ हमारी हाजिरी। आए हाय बिल्कुल, हम यही तो चाहते हैं कि आप लोग आए हमें बताए, हाजिरी भी लगा देंगे, है ना, क्योंकि आपका और हमारा साथ जो है, ये दुनिया वाले एक्चुअली कितने जलेंगे ना, ये दुनिया वाले पूछेंगे कि अश्विनी का शो सुना, फिर तुम लोगों ने कैलोरीज बर्न की, मुलाकात हुई, कुछ बात हुई, बहुत सारी बातें होती है ना 3 घंटे है तो और क्या बात है, क्या बात है। तो सुमिला जी, सबसे पहले आपका बर्थडे है, तो भाई लाइक अ गोल्ड रेडियो की तरफ से एंड लाइक अ रेडियो की तरफ से आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे। आई जस्ट सॉ योर मैसेज। तो सुमिला जी बिल्कुल आपका बर्थडे हम साथ में यहाँ पे मना रहे हैं, क्योंकि पूरे 3 घंटे पार्टी चलेगी डांस मस्ती वाली। बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी दोस्त अश्विनी की तरफ से भी। हाँ जी, तो हमेशा की तरह एक आएगा सवाल और उसके बाद में किसी लाइफ थियरी पे करेंगे बात। ओके, सो हम सभी समर वेकेशंस में, एक्चुअली हम लोग उसी एरा से आते हैं, मोस्ट ऑफ अस फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, जो भी यहाँ पे हैं, हम उस एरा से आते हैं जहाँ पे हम गर्मी की छुट्टियाँ मनाने, यानी समर वेकेशंस मनाने अपने नानी के घर, अपने मामा के घर, चाचा के घर, कहीं तो दूसरे शहर में गए होंगे और पूरे 1-1.5-2 महीने की छुट्टियाँ वहाँ बिताते होंगे। सो आई यूज़ टू गो टू इंदौर माई ननिहाल, एंड वहाँ पे बिकॉज हमारा फार्म हाउस ही था मामा जी का, तो इतनी मस्ती करते थे। और उस टाइम पे ऑब्वियसली टेलीविजन तो शाम में कुछ थोड़ा देखने मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज पूरा दिन धमाल चौकड़ी करते थे हम लोग, बहुत मस्ती करते थे। ऑल ऑफ अस कजिन्स, नियरली 15-20 कजिन्स हम इकट्ठा होते थे, बड़ी फैमिली थी। एंड उस टाइम पे हम लोग फिर बोर्ड गेम्स सीख गए कि भाई जैसे कैरम बोर्ड सीख लिया, चेस खेलना सीख लिया, और तब का जो सीखा तो अभी भी काम में आता है। विद कैरम बोर्ड मैं थोड़ा सा स्ट्रगल करती हूँ, लेकिन जब भी वेन एवर आई विन कॉइन्स तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि बाय फ्लूक यार, ये तो सही नहीं है ना, मैंने भी निशाना ठीक से साध के जो है मैंने भी वो कॉइन्स जीते थे ना। एनीवेज ठीक है, होता है, जेलस होते हैं लोग, बट विथ चेस आई हाई आई होप हमारी कभी चेस कॉम्पिटिशन हो, आप और हम साथ में बैठे और चेस ज़रूर खेले। तो मुझे बताइए कि बचपन में ये जो बोर्ड गेम्स थे ना, मोनोपोली भी कई लोग खेलते, बट फॉर मी चेस गेम इज ऑलवेज वेरी स्पेशल। और आउटडोर गेम्स भी हम बहुत खेलते थे, जिसे हम कहते थे लिगोरी, एंड वहाँ पे कुछ ईंटें पड़ी होती थी तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था मामा जी के यहाँ, तो ईंटें लेके वो घर बनाना, छोटा सा ही ना, वो पिलो लेके छोटा सा घर बनाना, वी हैड फन। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, आपकी समर वेकेशंस में बचपन में आपने समर वेकेशंस कैसे बिताई।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 127 इंडियन रुपीज एंड 60 पैसे। एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI Yono मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester

0: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
2: आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन एंड बेल्जियम के बीच में मैच होगा, वो भी शुरू होगा 8 बजे. एंड डोंट फॉरगेट, यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
3: आपके सामने एक रेड बटन है. नहीं दबाना था.
4: The madness is back. Dhamaal 4.
5: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
4: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 7:35, इट्स 7:35। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। हर रोज किसी न किसी लाइफ थियरी पे हम बात करते हैं। आज की थियरी अगेन छोटी सी, लेकिन शायद आप रिलेट कर पाए इस चीज से, द यंग एज थियरी। हम सभी देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई ऐसा एक व्यक्ति होता है हमारी जान पहचान में, जिसे देख के हम कहते हैं अरे तुम्हारी त्वचा से तुम्हारी उम्र का पता ही नहीं चलता। दैट मीन्स दे लुक टू यंग फॉर द एज। अब ये जो लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने स्किन केयर ही बहुत अच्छे से रखी है या फिर इनके माता पिता की तरफ से इन्हें अच्छे जीन्स मिले हैं इसलिए ये यंग दिखते हैं। वो फैक्टर्स तो होंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जीवन में जो कठिन परिस्थितियां आती हैं, जो स्ट्रगल्स आते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, वहाँ पर ये लोग उनसे हिम्मत से डील करते हैं और उसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन ढूँढ लेते हैं। जहाँ अपनी गलती हो वहाँ पे गलती मान के अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को हील करते हैं। वो सारे ट्रॉमास, वो ब्लॉक्स, वो पकड़ के नहीं बैठ जाते मेरे साथ ही क्यों, ये एक क्वेश्चन के साथ टिल द लास्ट ब्रेथ वो नहीं जीते। वो चीज़ों को जैसे हैं उसे एक्सेप्ट करके उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है, ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है ना, उसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में, हमारे माइंड में इतना नेगेटिव इफेक्ट होता है कि वो हमारी उम्र 10 साल से बढ़ा देती है। तो ऐसे जो भी लोग आपकी लाइफ में हैं जो दिखते यंग हैं, मैंने उसे कि नहीं, आई थॉट तुम तो 10 साल और छोटे हो इस एज से, तो वो जो लोग हैं ना, अगर वैसे लोग आपके लाइफ में हैं तो ज़रा उनके साथ में बैठिएगा, देखिएगा बातचीत के दरमियान कि वो कैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को उन्होंने डील की है, उन्होंने अपने आप पे क्या ये काम किया है कि वो अपनी उम्र से छोटे दिखते हैं। और फिर आप कहते हैं अरे तुम्हारी त्वचा से तुम्हारी उम्र का पता ही नहीं चलता। यंग एज थियरी, अगर आप भी इस यंग एज वाले ब्रैकेट में आना चाहते हैं तो अपने आप पे काम शुरू कर दीजिए। कैसी लगी आज की यंग एज थियरी बताइएगा ज़रूर। अगर इस ब्रैकेट में आना चाहते हैं तो लाइफ है आपकी, डिसीजन है आपका।
3: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
0: द इवनिंग शो विद अश्विनी।
4: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच, मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
5: Chase gives you 2% cash back on your everyday spending.
6: Every day? Like Monday's train to work?
5: Yes.
6: Tuesday's big shop?
5: Yes again.
6: Wednesday's coffee treat?
5: Yes, cash back.
6: Thursday's lunch, Friday's brunch and Saturday's takeaway?
5: Yep, yep and yep.
6: Super.
5: Oh, nothing on Sundays.
6: I take it easy.
5: Lovely. Enjoy 2% cash back on debit or credit card spending on groceries, restaurants, everyday transport and fuel. Search Chase Bank. 18 plus UK residents. Chase current and saver accounts required. Maximum £20 per month. Eligibility qualification. Exceptions and T's and C's apply.
0: This is Ashwini in for Anissa Nazir on The Evening Show.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
7: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
8: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: विजिट TravelHubWorld.com।
2: com.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
8: sonatours.co.uk 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call Sonatours on 0208 951 0111. Minar Jewelers, Wandsworth's Business Award winners. Best Customer Service 2026, come and find out why. Beautiful diamond engagement rings starting from £500. Phone 0208 767 7547.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. It's summer on the Leica Radio Network.

0: मिला लेंगे। घड़ियाँ देखते हैं टाइम कितना हुआ, इट्स 48 मिनट्स पास्ट 7। जी हाँ, तो हमारी एक बड़ी प्यारी लिसनर है संध्या भावसर जी, वो अपने ब्रदर इन लॉ अजीत कुमार भावसर जी को उनका बर्थडे विश करना चाहती हैं अलॉन्ग विथ हर होल फैमिली। सो अजीत भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने बर्थडे की, हमारे लाइका रेडियो की तरफ से, लाइका गोल्ड रेडियो की तरफ से, अश्विनी की तरफ से भी ढेरों शुभकामनाएं।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: For £1, you'll get 127.75 Indian rupee, 372.51 Pakistani rupee, 449.5 Sri Lankan rupee, 165.12 Bangladeshi taka, 87.63 Afghani, 173.11 Kenyan shilling, 1.33 US dollars.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LEICA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £98.37 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: बस टिक टिक करते हुए घड़ी कह रही कि इस आवर का जरा आखिरी गीत सुना देंगी। बिल्कुल सुना देंगे भाई, इसी के लिए तो आए हैं हम। एंड आप सभी मुझे इतना एंगेज रखते हैं विथ लोड्स ऑफ मैसेजेस। आप सभी जन अपना जो प्यार हमें देते हैं, जो दुलार देते हैं, जो लाड़ देते हैं, आ मज़ा आ जाता है। तो भाई फैंटास्टिक फ्राइडे में आप सभी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो फैंटास्टिक फ्राइडे वहीं पे वसूल हो गया ना। चाहे आपके घर पे सेलिब्रेशंस हो, पार्टीज हो, या आराम से अपने गार्डन में आप पानी डालते चल रहे हैं और सुन रहे हैं, वॉक पे गए सुन रहे हैं। एंड वही वन ऑफ द लिसनर्स सेज कि मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल, तो उन्होंने कहा कि मेरा तो कभी लगा ही नहीं। एक्चुअली सच में ऐसे ना हो जाता है कभी कभी कि हमें अरे यार पढ़ना, फिर से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये ना इट हैपेंस कि अभी जिस किसी उम्र में आप और हम हैं, और अगर हमें पढ़ना पड़ रहा है तो यार ये पढ़ाई कभी छूटेगी कि नहीं छूटेगी। बट आई थिंक वी ऑल आर स्टूडेंट टिल द लास्ट ब्रेथ, एंड इसीलिए हम कुछ ना कुछ पढ़ना लिखना हमारी लाइफ में चलते ही रहता है हमेशा की तरह। भाई जो मैं यहाँ पे लाइफ थियरी सुनाती हूँ, और जिन्होंने मिस की होगी, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है रेडियो वाली अश्विनी, उस पर मैं पोस्ट करूँगी, तो ज़रूर देख लीजिएगा। और पिछले इस पूरे हफ्ते में जो जो लाइफ थियरीज पर हमने बात की है, उसके बारे में भी मैंने वीडियो पोस्ट किया है ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, दैट इज़ रेडियो वाली अश्विनी। तो ज़रूर साथ देते रहिए। लास्ट ट्रैक मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सावन भादों से, कान में झुमका आए है वॉल्यूम अप।
1: Ashwini, brightening up your weeknights.
3: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show Sare Gamapa is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
4: Search is changing.
5: Customers aren't just using Google anymore.
4: They're asking AI.
5: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
4: One business, one recommendation.
5: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
4: Will your business be the answer?
5: Or the one that got left behind?
4: The future of search has already started.
5: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
4: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
3: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
6: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
3: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
6: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
3: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danu. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: Packed for the trip? Gifts? Passport?
10: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
9: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
10: Simzy?
9: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
3: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
1: The Evening Show with Ashwini. Leica Radio Network, broadcasting across Greater London.

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आ जा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हट तेरा।

हरे, जाती है क्यों परे परे, तेरी जिंदगी में आ जा प्यार को बता दूं मैं। पास अगर तू आ जाए सांस सांस

0: वेलकम, दिस इज द सेकंड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी। हम साथ में मना रहे हैं फैंटास्टिक फ्राइडे। फ्राइडे का वादा, मेरा वादा, बस वादा यही है कि ऐसे सारे गीत आएंगे जहां पे आप पैर तो थिरकाएंगे ही थिरकाएंगे, एंड इफ यू आर नॉट कॉन्शियस इनफ अबाउट अदर पीपल अराउंड यू, आप उठकर झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खिलखिलाएंगे, क्योंकि यही होता है इस शो में। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। इस आवर का आगाज हमने किया था कविता कृष्णमूर्ति एंड करण सरागति की आवाज़ में हम दिल दे चुके सनम से निम्बूड़ा निम्बूड़ा। उसके बाद में किशोर कुमार की आवाज़ में सनम तेरी कसम से देखता हूँ कोई लड़की हसी क्या बात है। नेक्स्ट ट्रैक जो सुना रही हूँ ना, उसमें फिर से आप लोग कहेंगे उफ एंड क्या बात है, आह मजा आ गया ये गाना सुनकर।
1: Reminisce those classics on Leica Gold. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 127 इंडियन रुपीस एंड 60 पैसे। And don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.

0: all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
1: I heard you. A red light becomes a moment to breathe. A coffee run, a kick of momentum. A wrong turn turns into an adventure, while a song becomes your soundtrack. From the driver's seat of an LBX, even the most ordinary of days can feel that little bit extra. The award-winning Lexus LBX self-charging hybrid. Find the extraordinary in the everyday.
0: This is Ash Winnie, in for Anissa Nazir, on The Evening Show. Like a gold.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
4: वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंड disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: Minar Jewelers Best Independent Retailer 2026. Come and find out why. Best jewelry for the bride and groom. Phone 0208-767-7547. Sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sonatours on 0208-951-0111.
0: Like a Gold, officially London's number one Asian Retro Music Station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com.
7: The Evening Show with Ashwini.

0: मिला लेंगे घर, यहाँ देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 8:29, 10th of July, फ्राइडे। हम सभी मना रहे हैं फैंटास्टिक फ्राइडे। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। मंडे से फ्राइडे तक रहता है आपका और मेरा साथ, और एक एक सप्ताह जैसे जैसे निकलते जाता है वैसे वैसे वक्त जा रहा है आगे। मुकेश जी की आवाज़ में छलिया फिल्म से सुनाया आपको दम दम टिका देगा। बिन पिए मैं तो गिरा, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। एक्चुअली ऐसे होता है कि कुछ कुछ लोगों की सूरत ना एक्चुअली ऐसी होती है कि यू फील लाइक वाओ, मतलब भगवान ने कितना टाइम लेके आराम से बैठ के इन्हें बनाया होगा, नाक नक्श चेहरा स्माइल एवरीथिंग। एंड समहाउ आई फील जो सिंगर्स होते हैं ना वो दिखने में भी खूबसूरत होते हैं, उनकी आवाज़ खूबसूरत होती है और उनकी पर्सनालिटीज़ तो वाह क्या बात है, और भी ज़्यादा खूबसूरत होती है। और कहा जाता है कि जो सिंगर्स होते हैं वो इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड होते हैं एंड इमोशनली विजिलेंट भी होते हैं, एंड दैट्स द रीज़न कि वो सुर ताल गीत इमोशन हर चीज़ को बखूबी समझते हैं। बेसिक इमोशंस हमारे लाइफ के जो होते हैं वो हम सभी उससे रिलेट करते हैं। बट अगर आप कोई गाना सुने, मैं और सैंडी हमेशा अक्सर यहाँ जब बैठते हैं और हम लोग गपशप करते रहते हैं, तो जब सिंगर्स के बारे में हम दोनों गप्पे मारते हैं तो वी टॉक अबाउट दिस कि किस लेवल पे उस सिंगर ने उस इमोशन को महसूस किया होगा कि इतना सुंदर तरीके से वो इमोशन हमारे सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। एनी सिंगर्स लिसनिंग टू मी, प्लीज़ ज़रा मैसेज करके हमें बताइए कुछ आपकी खूबियां जो रह गई होगी, बिकॉज आई जेन्यूनली एडमायर सिंगर्स। मेरी मम्मी जो है अच्छा गाती थी लेकिन शी वॉज शाय, तो उन्होंने खुद को ज़्यादा डेवलप नहीं किया और ये चीज़ मुझे हमेशा खली है। मैं उनके हमेशा उनके पीछे रहती थी जब तक वो इस दुनिया में थी कि आई सीख लो यार, गाना सीख लो। एंड आई वुड हैव रियली लव टू सिंग, बट आई थिंक प्रेजेंटर्स प्रेजेंट करते हुए अच्छे लगते हैं, वैसे ही करना चाहिए। नो हार्म इन ट्राइंग, बट प्लीज़ कीप ऑन ट्राइंग। आई डिड ट्राई इंडियन क्लासिकल, आई लर्न दैट फॉर जस्ट 3 months, बट देन इट हैपन्स यू नो कि जब आप कोई कला सीखते रहते हैं, ओके आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये महसूस किया है कि कोई एक इमोशनल कड़ी आपके अंदर होती है जो आपको शायद पीछे खींचती है, रोकती है, पता नहीं। विथ मी आई जस्ट फेल कि समथिंग इज़ देयर विच आई नीड टू वर्क ऑन, एंड आई एम वेरी ओपन टू टॉक अबाउट द इमोशनल स्टफ आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, हम सब की लाइफ में, बिकॉज वी आर ह्यूमन्स। हम पॉइंट टू पॉइंट बातें नहीं कर सकते, हम ह्यूमंस हैं तो हम बातें कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, शेयरिंग कर सकते हैं, जता सकते हैं, बता सकते हैं। कुछ चीज़ें अपने पास में रखनी चाहिए और कुछ चीज़ों को एक्चुअली डिस्कस करना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं मेरा मूड खराब है, मैंने नहीं बात करनी है, बट ओके टेक योर टाइम, टेक योर स्पेस। बट मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कई बार बात करने से ना बात बनती है। सो अगर आपके पास में कोई प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा कुछ इमोशनली कहीं आपको ब्लॉक लग रहा है, कहीं स्टक अप है, आई एम देयर, बिल्कुल आप कुछ जो है आपके मन में लिख के भेज दीजिए। मेरी तरफ से जितनी भी मदद होगी मैं ज़रूर करूँगी, बिकॉज हम सबको किसी ना किसी की ज़रूरत कभी ना कभी लाइफ में होती है। आई एम ब्लेस्ड विथ लवली पीपल इन माई लाइफ जिनके कंधे पे सर रख के आप अपनी चीज़ें बता सकते हैं। आपके भी लाइफ में होंगी, बहुत अच्छा, नहीं है बिल्कुल यहाँ पे आप लिख दीजिए। दुख दर्द पीड़ा का लंबा ऐसे ना लिखें, वैसे लिख दीजिए मतलब छोटे इसमें शॉर्ट में बताइए, बट प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग, बिकॉज आई थिंक बहुत ज़रूरत है हम सबको एक दूसरे को ये याद दिलाने की दैट वी आर देयर, यू नो, अकेला महसूस ना करें, क्योंकि अकेलापन लोगों को बहुत खा जाता है। एंड दिस मेंटल ये जो एक ब्लॉक है, जो ट्रॉमास होते हैं, जो अकेलापन होता है, लोनलीनेस होती है, ये इंसानों को ना बहुत खचोटता है। तो डोंट थिंक ट्वाइस, है ना, बिल्कुल आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं।
1: Brought to you by Dairy Valley. Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: Emotion of the day. Emotion.

0: लाइका गोल्ड। हे देयर, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। कैच मी ऑन माय शो गोल्ड आफ्टरनून्स विद ट्रिब्यूट्स, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने ऑन लाइका गोल्ड एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स फ्रॉम 1 PM टू 4 PM।
1: Episode number 24 is ready for you to watch and to listen to it. East African Asians, that's the topic this time. Episode sheds light on the roots and identity and journey of East African Asians. Like our extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
2: Like extra is here. This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show.
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com।
5: हे फ्रेंड्स, के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
6: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
5: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
8: You know how fans shout at football matches?
9: Oh, wake up!
8: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This week's Leica Extra podcast episode, we discuss roots and identity with East African Asians.
10: And, you know, also something as important as education, you know, we take for granted because it's a fundamental part of growing up, whereas our parents didn't have that. They built their careers or they got into work what they could. And it was kind of that opening for us that we could do what we want.
2: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Ashwini, brightening up your weeknights.
0: Leica Gold.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1, you'll get 127.82 Indian rupee, 372.6 Pakistani rupee, 449.56 Sri Lankan rupee, 165.15 Bangladeshi taka, 87.27 Afghani, 173.09 Kenyan shilling and 1.33 US dollars.
11: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
11: Leica Gold.
2: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £98.37 per gram.
2: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.

0: मिला लेंगे घर, यहाँ देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 49 minutes past 8। तो सेकेंड्स भी दिखाता है ना साथ में, तो आई वॉज लाइक ये क्या हो रहा है यार, हो जाता है ना डिजिटल घड़ियों में ऐसा अक्सर होता है। सो इस आवर का आखिरी गीत मैं जो आपको सुनाने वाली हूँ वो मैं लाई हूँ शिखर फिल्म से, आशा भोसले की आवाज़ में, पर्दे में रहने दो, क्या बात है, फैंटास्टिक ट्रैक। और आखिरी आवर की तरफ आप और हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, फैंटास्टिक फ्राइडे हैं, गीत संगीत इस तरीके के होंगे कि बिल्कुल पैर थिरकेंगे, डांस वांस करने का आपका मन भी होगा। टूवर्ड्स थर्ड आवर यस वो जारी रहता है, इसलिए तो स्पेशली ये दिन हमने डेडिकेट किया है डांस मस्ती के लिए। कल और परसों ऑब्वियसली मेरी होगी छुट्टी, तो मैं सैटरडे संडे लेती हूँ छुट्टी, लेती हूँ मतलब ऑब्वियसली छुट्टी है मेरी, एंड मंडे से फिर से आप और हम मिलेंगे। सो ड्यूरिंग द वीकेंड धूप फूप की ज़रा ध्यान रखिएगा कि वेदर कैसा है, उस हिसाब से अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। अगर धूप सहन नहीं होती तो प्लीज़ घर में रुकिए, फ़ैन की ठंडी ठंडी हवा लीजिए, एंड हाइड्रेटेड तो ऑब्वियसली छाछ, लस्सी, कोल्ड कॉफ़ी, आइसक्रीम, कैरी का पना, देन ठंडाई, ये सारी चीज़ें लेते रहिए, आपको जो भी सूटेबल है आपके लिए वो सारी चीज़ें लें, अपने स्वास्थ्य का खूब खूब ध्यान रखें, एंड आसपास के लोगों के लिए भी अपने फ्रिज में ठंडा पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक्स या ना ऐसे रखिए कि होता है ना कई बार दरवाजे पे कुछ लोग आते हैं कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कुछ मैसेज कन्वे करने के लिए, या चैरिटी वाले आते हैं, तो ज़रूर उनको कुछ ठंडा ऑफर कीजिए। इट्स रियली हॉट एंड वो लोग भी धूप धूप में घूम के काम कर रहे हैं, तो उतनी ह्यूमैनिटी तो हमारी बनती है।
1: This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
2: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
3: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
2: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
3: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
2: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
3: Visit Kajal's Couture. .co.uk
4: आपके सामने एक रेड बटन है,
5: दबा दिया,
4: नहीं दबाना था।
6: द मैडनेस इज बैक, धमाल 4,
7: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा,
6: स्टारिंग अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी, रिटर्न इन धमाल 4, डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार।
8: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
6: Watch the biggest family entertainer, Dhamaal 4, in cinemas now.
9: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आके कैसे आ जाता।
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
11: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
12: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
13: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
1: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
14: The Evening Show with Ashwini.
1: This is Leica.

0: Welcome. This is the third hour of the evening show with Ashwini. Third and the last hour, and this is the last show of this week. अगले सप्ताह नया शो, कुछ नए से आप, कुछ नए से हम, एंड नए वीक के साथ में आ जाती है हमारी लाइफ में बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज. सैटरडे संडे ये कंसेप्ट भी जब आया होगा, जब बनाया गया था, इसके बारे में हमने एक शो में बात की थी कि ये जो रिलैक्सिंग टाइम है कि मेंटली हम सभी जो हैं फ्राइडे ऑनवर्ड्स बेहद खुश हो जाते हैं, बेहद रिलैक्स हो जाते हैं और अपनी मनमानी थोड़ी करते हैं, क्योंकि एक स्ट्रक्चर जो वीकडेज में होता है सबके पास में, वो वीकेंड्स में कहीं ना कहीं थोड़ा आलस, थोड़ा रिलैक्स और थोड़ा मी टाइम ढूंढ लेते हैं. आप सभी मुझे हमेशा लिख के देते हैं कि ये जो रेडियो का ये जो टाइम है 7 से 10, ये हमारा अपना मी टाइम बन चुका है. सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड सपोर्टिंग, एंड इट मीन्स अ लॉट कि आप लोगों के बैक टू बैक जो मैसेजेस आते हैं, जो सराहना आती है, जो फीडबैक आते हैं, जो अपनी लाइफ के बारे में आप लोग बताते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है. तो कल सुबह हमारे दीप राजा आएंगे अपने मस्ती मज़ा इंटरेक्शन के साथ में, उनका साथ देते रहिएगा. हमारा वीकेंड क्रू भी ज़बरदस्त क्रू है, वीकडेज के क्रू की तरह. सो हम लोग ये जो आपकी म्यूजिकल फ्लाइट लेके उड़ते हैं, तो हमारा पूरा क्रू आप सबका साथ देते रहता है. दो बड़े ही अमेजिंग गीतों के साथ में तीसरे आवर का आगाज हमने किया. आशी की फिल्म विच वॉज रिलीज इन 1990, दिल का आलम, खुशनुमा गीत है ना, ऐसे रिफ्रेशिंग सॉन्ग. एंड 1 2 3 आहा, माधुरी दीक्षित, तेजाब, 1988, मज़ा आ जाता है बिल्कुल. और भी म्यूजिकल ट्रैक्स आप सबके लिए लाइंड अप हैं. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी.
1: Ashwini, brightening up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 127 इंडियन रुपीस एंड 20 पैसे. एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच. टीस एंड सीज अप्लाई.
2: ये है लाइका गोल्ड.

चलिए एक बार मिला लेते हैं, घड़ियां देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 28 मिनट्स पास्ट 9। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। बॉबी फिल्म से सुनाया लता मंगेशकर एंड शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में झूठ बोले, एंड उसके पहले मुकद्दर का सिकंदर से सलाम इश्क मेरी जान। ब्यूटिफुल ट्रैक लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्माया गया था माई मोस्ट फेवरेट जोड़ी ऑफ 70s 80s रेखा एंड अमिताभ बच्चन। एंड देखिए आज है 10th of July, तो किसी का बर्थडे होगा।

0: किसी की एनिवर्सरी होगी भाई, जिनके बर्थडे है उन सबको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, जिनके एनिवर्सरी है उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। अब आज मनाया जाता है नेशनल फ्रेंच फ्राई डे। तो फ्रेंच फ्राई हम सभी ने अपने जीवन में खाए हैं, स्पेशली जब हम अब्रॉड रहते हैं, जब कभी ट्रैवल करते हैं तो फ्रेंच फ्राई समथिंग हम लोग सभी खाना चाहते हैं। सो इस दिन को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, डेफिनेटली फ्रेंच फ्राई घर पे फ्राई करिए, उसे खाइए पीजिए, बाहर जाके ऑर्डर भी करिए और इन्जॉय करिए। पोटैटो हमारे लाइफ का कितना इंटेग्रल पार्ट है ना, और ये फ्रेंच फ्राइज जो हैं ये बच्चों से ले कर बड़ों तक हर किसी को ये पसंद आते हैं। एंड नॉट टू बी कन्फ्यूज विद अमेरिकन chips which are thinly sliced pieces of potato fried until crisp. French fries are the delicious result of battens of potato cut to various thickness and then fried in oil. ye combination bhi iska burger ke sath mein banaya. did they do some research when it comes to बर्गर और फ्रेंच फ्राइज का कॉम्बिनेशन कैसे जाएगा? आई एम श्योर ना रिसर्च होती होगी। एनीबडी जो रिलेटेड है वेल डिजाइनिंग एनी काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन हमें ज़रूर बताइएगा कि कोई स्पेशल बेनिफिट है क्या व्हेन वी गो फॉर फ्रेंच फ्राइज एंड बर्गर्स। सो ये मनाया जाता है एंड साथ में और भी कुछ कुछ मनाया जाता है, नेशनल किटन डे। अब जिनके यहाँ पे बिल्ली एंड उनके छोटे छोटे किटन्स होंगे आज उनका जन्मदिन मना लीजिए। उनका जन्मदिन किसी और डेट को भी होगा लेकिन आज नेशनल किटन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड कबाब डे, कबाब लवर्स बिल्कुल सेलिब्रेट करिए। नेशनल पीना कोलाडा डे, डोंट स्टेप ऑन अ बी डे, ओके। कलेक्ट कार अप्रिसिएशन डे, टेडी बियर पिकनिक डे। अब टेडी बियर पिकनिक डे, हम टेडी बियर से खेले हो ना हो लेकिन हमारे बच्चे ज़रूर खेले हैं। एंड एक सॉफ्ट टॉय होता है जो बच्चों का बड़ा फेवरेट होता है, साथ में पेट्स का भी ऐसा होता है। ऑल पेट पेरेंट्स द डेफिनेटली नो, विथ माई डॉग पीचेस, शी हैज़ अ ब्राउन कलर का छोटा डॉग विच शी लव्स अ लॉट एंड दैट इज़ अ फेवरेट। एंड अनदर वन इज़ अ आइकिया बॉल विच आई गॉट फॉर हर, द सॉफ्ट वन, शी रियली लव्स इट। सो आई एम श्योर आप सभी इंजॉय कर रहे हैं शो को। और आज गज़ल या कव्वाली मैं क्या सुनाने वाली, सो बिल्कुल कव्वाली सुनाने वाली हूँ। एंड शकील बदायनी की लिखा हुआ ये जो नेक्स्ट ट्रैक आपको सुनाऊंगी, साहिब बेबी और गुलाम फिल्म से।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: I heard you. A red light becomes a moment to breathe. A coffee run, a kick of momentum. A wrong turn turns into an adventure, while a song becomes your soundtrack. From the driver's seat of an LBX, even the most ordinary of days can feel that little bit extra. The award-winning Lexus LBX self-charging hybrid. Find the extraordinary in the everyday.
1: This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
3: आपके सामने एक रेड बटन है,
4: दबा दिया,
3: नहीं दबाना था।
5: The madness is back, धमाल 4.
6: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
5: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4, directed by Indra Kumar.
7: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
5: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now.
8: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आगे कैसे आ जाता।
9: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
10: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
9: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
10: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
9: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
11: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
12: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting, but it's as simple as DLC. Dutch, look, check. Dutch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/DLC.
4: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
13: Four beers, please, garçon!
4: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
1: Like a goal. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: What a beautiful track. गीता दत्त की आवाज में साहेब बीवी और गुलाम से सुनाया आप सभी को ये गीत। 1962 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। शकील बदायूनी का लिखा गीत। कुछ कुछ गीत जो है वो ऐसे ठहराव वाले, शांत, और इसमें ये दुख दर्द पीड़ा जो है क्लियरली बयां की गई है कि न जाओ न सैया छुड़ा के भैया, कुछ रिश्ते जिनके नाम नहीं होते लेकिन वहाँ प्यार इश्क मोहब्बत होता है, और न जाने ये मोहब्बत किस किस से क्या क्या करवा देती है। इस आवर में जो दो आखिरी गीत आपको सुनाने हैं उनके बारे में बात करेंगे बस कुछ ही देर में।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Hello friends, मैं हूँ सरिता सबरवाल। Every weekend 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। Saturday and Sunday मेरे साथ ही रहेंगे।
1: This is Ashwini, in for Anisa Nazir on the evening show.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
4: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट TravelHubWorld.com।
5: Every morning a shopkeeper opens his doors.
6: Lights on, shutters up, staff ready.
5: But today's customers don't start on the high street.
6: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
5: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
6: They walk into your competitors.
5: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
6: Hearty Hanks. The digital agency that doesn't play safe.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears. Give or take. See radio differently at radiocentre.org.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Making summer Currency feel better. Is sponsored
10: this
1: by Lemfi
10: is like a gold.
1: Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: For £1, you'll get 127.86 Indian rupee, 372.44 Pakistani rupee, 449.52 Sri Lankan rupee, 165.13 Bangladeshi taka, 86.91 Afghan Afghani, 173.06 Kenyan shilling, 1.33 US dollars.
11: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Leica Group. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £98.37 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: चलिए एक बार मिला लेते हैं फिर से घड़ियां। इट्स 43 minutes past 9। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद एंड आई एम इन ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल द लव ब्लेसिंग्स बेस्ट विशेस यू गिव मी ऑलवेज ड्यूरिंग द होल वीक। नेक्स्ट वीक जरूर मिलेंगे मंडे, लेकिन उसके पहले मल्टीटास्कर्स हैं आप लोग। हाँ, वहाँ पे मतलब मैचेस भी देखते हो, यहाँ पे गीत भी सुनते हो, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग जो है सब आप जब कहते हो कि देखो हमको मैच भी देखनी है लेकिन हमें तुम्हारा शो भी सुनना है, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं ना, आई थिंक एवरी आर्टिस्ट जो है उसे ये बहुत सपोर्टिव लगता है ये सारी चीज़ें। रेडियो प्रेजेंटर्स आर आर्टिस्ट इन देयर ओन वे बिकॉज दे क्रिएट अ शो फॉर यू ऑल, और जिस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं उसमें पूरी इस चीज़ को लेके हम कोशिश करते हैं कि आपका मनोरंजन हो, मैसेजेस भी कन्वे हो और साथ में आप और हम मिलके ये म्यूजिकल जर्नी एंजॉय करें। गोल्ड नाइट्स ओवरनाइट सर्विस है, जरूर सुनिएगा लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2। हमारे वीकेंड क्रू के लिए तैयार रहेगा, मंडे इवनिंग मिलेंगे आप और मैं, हमेशा की तरह इतना ही कहेंगे भाई प्यार बहुत बहुत बहुत प्यारी चीज़ है, तो प्यार दो, प्यार लो। एंड आई एम श्योर आप लोग पावर का यूज़ तो नहीं करते होंगे क्योंकि पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए, एंड आप और हम हैं म्यूजिकल फैमिली। लाइफ बहुत सुंदर है, इसे कॉम्प्लिकेटेड ना करें, प्लीज़ कम्युनिकेट कीजिए, अगर कुछ बात करनी है तो कॉम्प्लिकेशन में ना लेके जाए। अपना खूब ख्याल रखें, प्लीज कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। ऑन दैट नोट आई हैव टू से लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।
5: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
10: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: विल नहीं है, ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। अपनी फैमिली को सिक्योर करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208-907-2444।
3: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

0: London's favourite Bollywood classics all night. This is Like a Gold.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410। दैट्स 8574 8410। साउथ

0: Protected.
1: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
3: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
4: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
5: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

0: है
1: लाइका गोल्ड। सी टीवी एंड C5 प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम, प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर। इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई, इवेंटिम अपोलो, हैमरस्मिथ। हमारे राम।
2: बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventimapollo.co.uk एंड यूज कोड हमारे राम 10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल शोज एंड टिकट।
1: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक Our radio.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
4: आपके सामने एक रेड बटन है,
5: दबा दिया,
4: नहीं दबाना था।
6: The madness is back. धमाल 4.
7: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
6: Starring अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। Return in धमाल 4. Directed by इंदिरा कुमार।
8: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
6: Watch the biggest family entertainer, Dhamaal 4, in cinemas now.
9: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer. So it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
10: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
11: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
10: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
11: And you didn't pay those massive roaming charges?
10: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
12: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
13: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदा बहार गीत।

0: Gold Nights. Hit tracks non-stop throughout the night. Like a Gold on 10:35 a.m.
1: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
2: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Southall Travel.
3: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
1: Southall Travel can take you there.
4: Southall Travel, at all protected.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
0: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
8: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
9: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर.

0: लाइका गोल्ड travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: Evening. How's your night shift going? Just a quick check-in from Acorn Insurance, the taxi specialists. We've been by your side for over 40 years, helping new drivers earn a no-claims bonus from day one and accepting up to 9 years no-claims from veteran cabbies. That's why we're the largest taxi insurance specialist in the UK. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Bye for now. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: Chalo jaiye ek nava safar par.
6: सिरीन हॉलीडेज अपनी पूर्व अफ्रिकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे कंपाला नाइरोबी मुंबासा जांजिबार अने दारेसलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स
7: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ
6: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे वधु माहिती माटे
7: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
6: 0116266481 पर वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर
8: यू नो आई फैन शाउट एट फुटबॉल मैचेस That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
9: Classic Nagumi. Aapke apne Laika Gold par.
10: सावन का महीना पवन करे शोर
11: सावन का महीना पवन करे शोर
10: पवन करे शोर
11: पवन करे शोर
10: अरे बाबा शोर नहीं शोर शोर शोर
11: पवन

0: अरे अरे मैं भी हो गई लाल।
1: साधु साधु।
0: फिर रात हुई, एक बात हुई, चोरी चोरी चोरी मुलाकात हुई।
1: फिर
0: फुर फुर फुर फुर। बताओ नी बड़ी क्या बात हुई। कह दो
2: कह दो
0: कह दो कह दो।

0: प्यार बिना जीवन है टोटल फ्लॉप। पुण्य पाप के चक्कर में कोई पढ़ के सके ना बच।
1: क्यों रे चले, झूठ कहा?
2: नहीं गुरुजी, सच।
1: थैंक यू वेरी मच।

0: चीज है ये करुमत दम, कभी नहीं सोचना कि थर्रा या रम, कितने पियो के उखड़ जाए दम, बाटली मिले तो पूरी बाटली खत्म। हर जब विस्की से मन भर जाएगा तो तौबा कर जाएगा, मन पे जो कोई काबू कर जाएगा, भव सागर से वो तर जाएगा। मोटे अकल वाले ना समझे मेरी बात, बारीक है।
1: क्यों चले जी, गलत कहा?
2: नहीं गुरुजी, ठीक है।